मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रातः बेला की
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया।

0: प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों

0: सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से दो दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

सुबह आसमान से सिर्फ रोशनी का उतरना ही नहीं है, सुबह हमारे भीतर अपने अस्तित्व के प्रकाश का उतरना भी है। इसीलिए भोर की पहली किरण के साथ वंदना का विधान है कि जब नए दिन की नई रोशनी इस धरती पर बिखरे, तब हमारा अंतर मन भी नए विचार और आत्म जागृति से आलोकित हो। एक ऐसा प्रकाश कि जिसमें हम देख सकें अपना होना और अपने होने का औचित्य। एक ऐसा प्रकाश जो मन को झुका दे जीवन और जीवनदाता के सम्मुख। तो आज की वंदना में नत होते हुए आइए पहले गौरवगान करें अपनी माटी

जिसे परमात्मा की झलक मिल गई, उसके लिए ये सारा संसार मिट्टी हो जाता है। जिसे भीतर इतनी बड़ी संपदा मिल जाती है, उसके लिए बाहर की सारी संपदा व्यर्थ हो जाती है। ईश्वर की वीणा जिसके हृदय में बज उठी, उसके लिए फिर सारी आवाजें शोर हो जाती हैं। फिर सुबह शाम दिन रात मन वीणा के तारों पर भक्त अपने आराध्य का नाम ही गुनगुनाता है, पल प्रतिपल अपने प्रभु के दर्शन चाहता है।

जहां मन है वहां संसार है, और संसार का विसर्जन ही भक्ति। मन का न होना अर्थात काम क्रोध मदमोह और लोभ का न होना। मन के विसर्जन के साथ ही एक स्वरहीन संगीत हमारे भीतर पैदा होता है, एक मौन हमारे भीतर उतरता है, जिसे ज्ञानी जन अनहद नाद कहते हैं। सच तो ये है कि इस मौन के उतरते ही हमारे भीतर ईश्वर उपस्थित होता है। फिर हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, वो हर क्षण हमारे साथ बना रहता है।

जिसने भी उस ईश्वर को ढूंढा नहीं पाया, जिसने खो दिया स्वयं को पा लिया उसे, जिसने जानना चाहा उसे वो अपरिचित ही रहा, जिसने अबोध की तरह समर्पित कर दिया खुद को जान लिया उसे। भक्ति के संसार की रीत निराली है, उसके चरणों में जो शीश झुक गया फिर वो मस्तक ऊंचा ही रहा हर जगह।

ईश्वर का प्रेम सबके लिए है बराबर, जैसे सूरज की रोशनी हर आंगन के लिए बराबर है, जैसे बारिश की बूंदें सबको भिगोती हैं, सबके हिस्से के चांद सितारे बराबर हैं, सबके हिस्से की हवा बराबर है, ठीक उसी तरह उसकी कृपा सबके लिए बराबर है। वो परम दयालु परम उदार है। उसकी कृपा के लिए भक्त को कोई जतन नहीं करना होता, बस विशुद्ध प्रेम से भरकर उसे पुकारना होता है।

0: इसके साथ ही संपन्न होती है आज सुबह की भजन यात्रा वंदना। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर, जगजीत सिंह और अनुपमा देशपांडे।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान, स्वर है सुरेश वाडकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देवनदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। समय है आज के चिंतन का, आलेख विनय उपाध्याय का है।
1: तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारे इस जीवित प्रकट संसार की सारी प्रक्रिया ही ज्योति की तलाश है। ज्योति यानी उजियारा, उम्मीद, गतिमान रहने और नवनिर्माण की राहें प्रशस्त करने का अनवरत सिलसिला। इस निरंतरता की ऊष्मा का प्रदाता है सूर्य, नवग्रहों में प्रथम और ग्रहों का अधिपति, समूचे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित अग्निपिंड। इसकी व्याख्या से जिस वृत्त की रचना होती है वही है धरती, आकाश, हवा, पानी का संसार। इन सब से मिलकर निर्मित होने की सृष्टि ही जीवन है। इसकी उत्पत्ति और लय का मूल एक है, वह मूल सूर्य है। सूर्य इस ब्रह्मांड का नाभिक तपपुंज है, प्रकाश पुंज है। धरती, आकाश, जल और हवा का एहसास उसी के अस्तित्व से है। इसीलिए कहते हैं सूर्य ही जीवन है। रात के अंधियारे को भेदता पूरब से जब उषा का सूरज झांकता है तो उसकी किरणों से फूटता प्रकाश एक नए जीवन की इबारत लिखने लगता है। जैसे एक नई जीवन गति का सूत्रपात सूर्योदय के साथ होने लगता है। नई इच्छा शक्ति, नए स्वप्न, नई ऊर्जा और नई उपलब्धियों का सुनहरा अध्याय रचने सारा संसार मचल उठता है। सुबह का सूरज दरअसल जीवन की विस्तारवादी संकल्पना का प्रतीक है। पुराण के अनुसार सूर्य प्रजापति कश्यप तथा दक्ष पुत्री अदिति के पुत्र हैं। ये आकाश के देवता माने गए। संज्ञा, छाया, स्वाति, सवर्णा और महावीर्या इनकी पत्नियां मानी गई हैं। यम, यमुना, मनु, अश्विनी कुमार, शनि आदि इनकी संतान हैं। सुग्रीव और कर्ण इनके औरस पुत्र हैं। सुंदर सात घोड़ों से सज्जित रथ इनकी सवारी है। सूर्य का रंग जबा कुसुम के समान लाल माना जाता है। त्रिनेत्र तथा चतुर्भुज मनुष्य रूप में इनकी कल्पना की गई है। माना जाता है कि सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा को ब्याहा था। तीन पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद संज्ञा इनके ताप को असह्य देखकर अपनी सखी छाया को इनके पास छोड़कर वन में चली गई और अश्विनी रूप में रहने लगी। कई वर्षों तक सूर्य ने छाया को ही संज्ञा समझा, लेकिन एक बार छाया ने संज्ञा के एक पुत्र यम को पंगु होने का शाप दिया, जिसका तुरंत परिणाम निकला। इस पर सूर्य को संदेह हुआ, क्योंकि माता का शाप पुत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तभी उन्होंने संज्ञा की खोज की तो उसे एक वन में अश्विनी रूप में देखा। सूर्य ने अश्व रूप अपनाकर उसके साथ कुछ समय तक जीवन गुजारा, लेकिन अपने इस स्वरूप से तंग आकर दोनों ने प्रकृति यानी वास्तविक रूप ही स्वीकार करना चाहा। सूर्य को भास्कर, रवि, सूरज आदि पर्यायों से पहचाना जाता है। वह शाश्वत है, इसलिए जीवन अमर है। कहते हैं कि प्रलय में इसी सूर्य में ही जीवन बीज रूप में शेष रहता है। समय की कोई चुनौती उसके अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। चांदी सी चमचमाती धूप की सौगात इस धरती को देने वाला सूरज काल पुरुष है, जो हर पल जीवन के पन्नों पर नए अर्थ भरे अध्याय लिखता है। ये भुवन भास्कर सतरंगी जीवन अनुभूतियों का संचारक है। सूर्य है तो रंग है, यदि नहीं तो कालिमा डेरा डाल

0: से नहीं चूकती। इन्हीं सूर्य किरणों ने हमारी मोरपंखी उम्मीदों को गति और साहस दिए हैं। जीवन की शक्ति का नियंता ये रवि हमारा मित्र है, हितैषी है, वह हमारी आत्म जागृति का प्रतीक है। सूरज की वजह से इस धरती का ऋतु चक्र है, मौसम है, उत्सव है, दिशाओं की सुंदरता है, नदी, झील और समंदर की निराली शोभा और आसमान की सुंदर शक्लें हैं, बाग बगीचों और खेत खलिहानों के मन छूते आंचल हैं। प्रकृति बार बार अनेक तरह से सूरज का आभार मानती है। सूर्य के ताप में सत्य की चमक होती है। समय ने सिर्फ उन्हीं को याद रखा जिसके पास सूर्य की तरह तप था, इसलिए सूर्य स्तवन को हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा में आत्म प्रकाश संचित करने की विधि की तरह स्वीकार किया गया है। उगता हुआ सूरज इस सृष्टि की महान घटना है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। वार्ता का विषय है फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर अजीत कृपाल साहू।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन की। जिस प्रकार हम अपने शरीर के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेते हैं, हम दूध भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, अनाज भी, दाल भी, सब्जियां भी खाते हैं, उसी प्रकार हमारे पौधे की भी बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं। उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है और उनको किस प्रकार देना है हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से पोषक तत्व बहुत आवश्यक हैं। लगभग 16 प्रकार के पोषक तत्व वैज्ञानिकों ने निर्धारित किए हैं, जिनमें प्रमुख जो पोषक तत्व हैं जिनसे पौधे का शरीर बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो कि पौधे को जल और वायु से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे गौण पोषक तत्व हैं उनमें देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं। फिर जो कुछ कम मात्रा में लगते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म मात्रा में लगने वाले जिंक, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि। तो इस प्रकार से किसान भाइयों बहुत से पोषक तत्व हैं और सबकी अलग अलग रोल रहते हैं, अलग अलग भूमिकाएँ रहती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि टमाटर के पौधे में यदि बोरान की कमी हो जाती है तो टमाटर के फल फटने लगते हैं। यदि हम टमाटर के पौधे को बोरान देंगे तो ये डिफिशियंसी, ये कमी दूर हो जाएगी, परंतु अगर हम दूसरे पोषक तत्वों से इसकी भरपाई करना चाहें तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जिस पोषक तत्व की कमी हो उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में देना है। हम सामान्यतया क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन पोषक तत्व उसको किसान भाई ज़्यादा देते हैं, जो कि यूरिया के माध्यम से दिया जाता है, 46% रहता है यूरिया में, और अधिक से अधिक किसान भाई इसका उपयोग करते हैं जिसके कारण पौधे कमज़ोर और लचीले हो जाते हैं। बढ़वार तो अच्छी ज़रूर दिखती है लेकिन रोग और कीटों का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो हमको संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मिट्टी की जाँच कराएँ। हमारे खेत की मिट्टी की जब तक जाँच नहीं होगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ फास्फोरस की कमी है या पोटाश की। तो मिट्टी की जांच कराने के बाद में जो अनुशंसा की जाती है उसी अनुसार हमको उर्वरकों का उपयोग करना है या कि पोषक तत्वों का उपयोग करना है। और साथ ही हमको मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हम जैविक खाद खेत में पहुंचाते रहें, हम हरी खाद का भी उपयोग करते रहें, हम फसल चक्र भी अपनाते रहें और साथ ही जैव उर्वरकों का उपयोग भी करते रहें। तो किसान भाइयों, हम इस तरीके से मिट्टी के पोषण को संतुलित कर सकते हैं, पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं और साथ ही इससे पौधे का जो है संतुलित विकास होगा, समग्र विकास होगा और किसी प्रकार के जो है रोग और कीट ये आसानी से पौधे को परेशान नहीं कर पाएंगे और उत्पादन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है। बात करते हैं इनके उपयोग की। तो जब फर्टिलाइज़र या उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो फास्फोरस और पोटाश ये हमारे आधारीय उर्वरक हैं जिनको कि बोनी के समय या कि खेत की तैयारी के समय फसल में दे दिया जाता है। नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जिसको कि हम किस्तों में देते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों

0: संतुलित उर्वरक का उपयोग करना है, जैविक उर्वरकों का उपयोग करना है, कार्बनिक खाद का उपयोग करना है, और हमको मिट्टी के स्वास्थ्य को संतुलित बना करके रखना है, अच्छा बनाना है। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही, धन्यवाद।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
8: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति, तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 85th नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्यसुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख

0: प्रतिनिधिभिः साकमपि विचारविनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक सन्धेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मन्त्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयु इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड

का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20

यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बाल श्रम निषेध दिवस पर भोपाल की उप श्रम आयुक्त पी जास्मिन अली सितारा से जानकारी। युवा सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे करें, ये बताएंगे सोशल मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रभात पोद्दार। और एक मुलाकात होगी ग्रीन वॉरियर श्री सुनील दुबे से। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर केंद्रित सुरमई सवेरा कार्यक्रम। 9:15 पर गांधी चर्चा का प्रसारण होगा। 9:30 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन। राग होगा मंगल भैरव। दिन में 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुनवाया जाएगा। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि हम फोन इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग रोजाना सुबह 10:30 से 11:00 के मध्य करते हैं। दिन में 12:00, 2:30 पर और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पर संग्रहालय से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिएगा इसकी 7वीं कड़ी। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इन चारों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की होगी। दिन में 2:00, शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:35 पर और रात्रि 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, जिसमें आज का आकर्षण है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रात्रि 9:30

पर खेल जगत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे प्राची तिवारी की वार्ता आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन, राग होगा सरस्वती। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी NDA के 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा, खासकर एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। कृषि मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, PM मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट

0: सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्ची की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धसागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौध गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल

एनआरएलएम आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। आईटीआई इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर, देहरादून में एनडीए की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई और 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वीकारे शिखा जैन का प्यार भरा अभिवादन आज के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम के अंक में।

ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए मुझे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में। दोस्तों, एक कहावत है, जीवन में अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना होता है। आज गर्मी बहुत तेज है, उन प्यारी सी बूंदों से मिलने के लिए, उस हरियाली को महसूस करने के लिए हमें इस गर्मी को गले लगाना ही होगा। दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जब दुख हमारे जीवन में आता है तब हमें महसूस होता है कि शायद इस दुख का कभी अंत नहीं होगा। पर दोस्तों, सच्चाई यही है कि हर दुख का अंत होता है, हर रात की सुबह होती है, हर व्यक्ति या वस्तु का समय बदलता ज़रूर है, बस ज़रूरत होती है धैर्य के साथ उस वक्त को निकालने की। कहते हैं रात काली उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ करती है दोस्तों, जब सुबह होने वाली हो। अगर आप जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, अच्छा वक्त आपके बहुत करीब है, बस आप हिम्मत मत हारिएगा और चलते रहिएगा आगे इस गीत को गुनगुनाते हुए।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आने वाले मानसून की दस्तक हो या गर्मी से बेहाल भोपाल का हाल, सब कुछ लेकर आता है नमस्कार भोपाल। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम बात करेंगे बाल श्रम निषेध दिवस पर, जानकारी देंगे आपको कि युवा सोशल मीडिया का सही उपयोग किस तरह से करें, और साथ ही साथ मिलवाएंगे आपको ग्रीन वॉरियर श्री सुनील दुबे जी से। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। सबसे पहली खबर में भोपाल ग्वालियर के बीच ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा, 7 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा होगा। मध्य प्रदेश में 6वें ग्रीन फील्ड 4-लेन हाईवे की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल ग्वालियर के बीच ये कॉरिडोर मौजूदा रूट से पूरी तरह अलग होगा। हाईवे कहां से गुजरेगा, इसके लिए DPR तैयार करने के लिए इसी माह टेंडर जारी किए जाएंगे। उच्च स्तर पर परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं अगली खबर में देश के पहले मेड इन इंडिया सैन्य परिवहन विमान की टेस्ट उड़ान सफल। 11 जून 2026 का दिन भारतीय विमानन और रक्षा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। गुरुवार को देश के पहले मेड इन इंडिया एयरबेस श्री C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने बड़ोदरा से पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस की बड़ोदरा स्थित फाइनल असेंबली लाइन में बनाया गया है। ये वायुसेना के लिए देश में बनने वाले 40C-295 विमानों की श्रृंखला का पहला विमान है। वायुसेना को पहला विमान इसी साल सौंपेंगे। और एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के नए वेरिएंट पर उत्पाद शुल्क खत्म। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के E22, E25, E27 और E30 वेरिएंट्स पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार क्रमशः 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। और बिहार पहुंचा मानसून मध्य प्रदेश की ओर बड़ी रफ्तार। आज भोपाल समेत 38 जिलों में आंधी और बौछारों का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार फिर रफ्तार पकड़ ली है। IMD के मुताबिक गुरुवार को मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पांडुचेरी के शेष क्षेत्रों को भी मानसून ने पूरी तरह कवर कर लिया है। इधर भोपाल मौसम केंद्र ने शुक्रवार को भोपाल सहित प्रदेश के 38 जिलों के लिए बादल, आंधी और बौछारों का येलो अलर्ट जारी किया है।

0: और 13 जून को फिल्म इन गलियों में की स्क्रीनिंग। सिविल सोसाइटी टॉक्स और भोपाल स्टोरी टेलर्स के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार 13 जून को एक विशेष फिल्म स्क्रीनिंग और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान फिल्म इन गलियों में प्रदर्शित की जाएगी। ये आयोजन कस्तूरबा नगर स्थित भारत स्टोरी टेलर्स के प्रथम तल पर शाम 4 बजे से शुरू होगा। और भोपाल की प्रीति बंगाल में लगाएंगी प्रदर्शनी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी द शेप ऑफ एप्सिस में भोपाल की वरिष्ठ चित्रकार प्रीति तामोट कलाकृतियां प्रदर्शित करेंगी। डुआर्ट्स आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी 15 से 17 जून 2026 तक सिलीगुड़ी के रामा किंकर प्रदर्शनी कक्ष में लगाई जाएगी। समाचार पत्रों से फिलहाल इतना ही, पर कार्यक्रम में जानकारी, मुलाकातों और मनोरंजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम नमस्कार भोपाल को सुनते हुए।
1: मैं गीतकार समीर और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल, सुनते रहिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। कार्यक्रम में वक्त हमारे पहले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, हमें जीवन में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपना सारा जीवन किसी एक सोशल कॉज के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक ग्रीन वॉरियर से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपका नाम है श्री सुनील दुबे जी, और आइए जानते हैं उनसे अपनी इस सच्ची कहानी की दास्तां को।
1: जी नमस्कार, मैं वृक्ष मित्र सुनील दुबे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा हूँ। नेपाल सरकार की तरफ से जो है मुझे अवार्डेड किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से, और राष्ट्रीय पर्यावरण दूत हूँ। श्रेष्ठ वृक्ष मित्र की उपाधि जो है मुझे दी गई है। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का जो है वो स्वागत करता हूँ। 128 सम्मानों से सम्मानित हूँ आज तक मैं। तो इस तरीके से पेड़ों को कटने से बचाना और पौधे लगाना, ये मेरा उद्देश्य है। मैंने एक संकल्प लिया था 2008 में कि मैं अपना संपूर्ण वेतन समाज सेवा के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर खर्च करूंगा। तो उसी संकल्प को जी रहा हूं मैं आज भी। जहां भी कहीं से खबर आती है कि कहीं पेड़ कट रहा है तो हम लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जहां भी कहीं से संदेश आता है कि हमें पौधे लगाने हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरीके के पौधे लगाने हैं ये बताइए, तो हम जो है उस तरीके के पौधे लेके जाते हैं और उनकी इच्छा अनुसार वहां पर पौधा रोपण कराते हैं।
0: सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपको ये वृक्ष लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों आपके जहन में ये ख्याल आया कि हम मित्र तो बहुत सारे लोगों के बनते हैं, बहुत सारे लोग हमें मित्र बनाते हैं, वृक्षों को आपने मित्र के तौर पे कैसे चुना?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये असल में एक बहुत लंबी स्टोरी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में जो है वो ऑपरेशन के पहले डॉक्टरों ने जब देखा और उन्होंने कहा कि यू आर नॉट सर्वाइव, क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल से थोड़ा छोटा ट्यूमर था और 6 टाइम एक्स्ट्रा उसके अंदर रक्त चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम अगर इसको ओपन करेंगे तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड जो है, रक्त जो है, वो बह जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब मैंने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। उस वक्त मैंने एक संकल्प लिया कि मैं बचा अच्छा रहा, क्योंकि वो पिटिकल लाइन जो है आज्ञा चक्र से टकराता हुआ था, उससे सटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसमें टच होने पर हो सकता है आप विकलांग हो जाएं अगर हम ऑपरेशन करें तो, ये भी हो सकता है कि आप ब्लाइंड हो जाएं, आपको एक की जगह दो लोग दिखने लगे या तीन लोग दिखने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं और इन कामों को करने के लिए ऊपर वाला मेरा साथ देगा और ऑपरेशन सफल होगा। तब से लेके आज तक मैं जो है उसी संकल्प को जी रहा हूँ और इस तरीके से जो है प्लांटेशन कर रहा हूँ। वहां से आने के 3 महीने बाद, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 3 महीने का बेड रेस्ट है, आप जाएंगे तो 3 महीने जो है रेस्ट करिए, 3रे महीने से जो है मैंने पौधारोपण चालू कर दिया। यहाँ पे लोगों को पौधे बांटना चालू कर दिए हैं। तो 4,42,000 से ज्यादा मैं पौधे अभी तक बांट चुका हूँ, 3,63,000 से ज्यादा लगा चुका हूँ। इस तरीके से मंचों पे हम जो है वो पौधे बांटते हैं। जहाँ भी कोई मंच होता है, कार्यक्रम होते हैं, लोग बुलाते हैं, तो हम वहाँ पर जितने भी अतिथि होते हैं सभी को पौधे देते हैं। औषधि पौधे के अलावा जो है वो फलदार पौधे ये हैं, शो के अर्नामेंटन लगाने हैं तो वो बता दीजिए आप, तो उस हिसाब से उनकी पसंद के पौधे उनको देते हैं जिससे वे लगाएं और उन्हें बड़ा करें और उन्हें सुरक्षित रखें।
0: आपसे जानना चाहेंगे

0: कि पौधे लगाना अच्छी बात है। अब जैसे ही बारिश आएगी, कई लोग जो है वृक्षारोपण करेंगे, उन्हें सस्टेन रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: अभी आज जो है 42 डिग्री के करीब तापमान होगा, आज की डेट में 45 डिग्री तापमान भी होता है, हम उसमें भी पौधे लगाते हैं और उन्हें जीवित रखते हैं। कि कैसे जीवित रहेंगे उसकी हमारी एक टेक्निक है, हमारी तरीका है। हम गड्ढे खुदवाने के बाद में पहले पृथ्वी माता को ठंडा करते हैं, उसमें पूरा पानी भर देते हैं गड्ढे के अंदर, 2x2 के गड्ढे को पूरा भर देंगे, फिर पानी सूखा फिर भर देंगे, फिर मिट्टी डालेंगे उसको, मिट्टी डाल के मिट्टी की गर्मी को शांत करेंगे, फिर उसके बाद उसमें पौधा लगाएंगे। अब पौधे लगाने के बाद में पुनः उसमें पानी डाल देंगे, फिर वहां आसपास में जहां भी कहीं पत्ते पड़े हुए होते हैं उन पत्तों को उस गड्ढे के ऊपर रख देते हैं। कि अब जो सूर्य देवता की जो तपन है, जो उनकी तपिश आ रही है, वो पत्ते झेलेंगे पृथ्वी माता के ऊपर या धरती पे, नीचे जो है मिट्टी के ऊपर वो नहीं पहुंचेगी, जिससे नीचे की नमी बरकरार रहेगी और वो पौधा जीवित रहेगा और वो बड़ा हो जाएगा।
0: आगे भविष्य में आप कितना लक्ष्य लेकर आप चले हैं जीवन में कि इतने पौधे तो आपको रोपित करना ही करना है?
1: लक्ष्य तो मैंने बहुत पहले तय किया था कि मैं 5,000 पौधे जो है वो प्रति राज्य में लगाऊंगा, 5 राज्यों में काम कर रहा हूँ मैं ऐसा कर।
0: आपसे जानना चाहेंगे, जब ये सम्मान आपको मिलते हैं, इससे आपका सर जो है फक्र से तो ऊंचा होता ही होगा, क्या ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ भी आपके ऊपर डाल देते हैं?
1: सत्य कहा आपने, जब कोई सम्मानित करता है तो उसकी अपेक्षाएं रहती हैं हमसे भी, कि हमने किसी व्यक्ति को सम्मानित करा है तो वो आगे भी जो है वो कार्य करता रहेगा, और इसी तरीके से जो है वो समाज को कुछ देने की उम्मीद में वो हमें सम्मानित करते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं।
0: आगे भविष्य में क्या आप युवाओं से उम्मीद रखते हैं? क्या अपने जैसे ग्रीन वॉरियर्स और तैयार करने के लिए आप तैयार हैं, या कितने कर चुके हैं अभी तक?
1: वर्तमान में मेरे साथ में स्लम एरिया के 200 बच्चे हैं जो पौधारोपण में हम लोगों का सहयोग करते हैं जगह जगह पे। एक चिनार पार्क एक क्षेत्र है, उसके अंदर हमने करीब 2,000 पौधे लगाए हैं उन बच्चों के साथ में। भीमनगर बस्ती के बच्चे हैं, वो लोग हमारे साथ में आते हैं और वो लोग वहाँ पे पौधारोपण करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब वो वहाँ से गुजरते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अपने साथ में 1 लीटर की एक बॉटल लेके चलते हैं, उनके द्वारा लगाए गए पौधे में वहाँ जाके वो पानी डालते हैं। जब स्कूल से घर की ओर आते हैं तो फिर वहाँ से एक बॉटल पानी भर के लेके आते हैं, शाम को आके अपने पौधे में फिर पानी डालते हैं। तो ये एक प्रेरणा है हमारे लिए भी कि हम पौधा लगाते हैं तो उसको जीवित रखें, और कैसे रखें, उसकी प्यास बुझाने के लिए हम आज अगर प्रयासरत रहेंगे तो यही जब जंगल बन जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे, तो यही पौधे जो हैं वर्षा को आकर्षित करेंगे और हमारे क्षेत्र में जो है अधिक से अधिक वर्षा होगी।
0: अगर कोई व्यक्ति वृक्षारोपण करना चाहता है, वो भी इस मुहिम में आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो वृक्षारोपण कहाँ कर सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि उसके आसपास जगह कहाँ है लगाने के लिए।
1: एक तो सबसे बड़ी चीज है, जैसे वो जहाँ रहते हैं, अगर वो कॉलोनी है तो कॉलोनी में यदि जगह है कुछ जहाँ पे हम पौधे लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पर कोई पार्क है तो उस पार्क में जो है वो पौधे लगा सकते हैं वो, अन्यथा वो हमसे संपर्क करेंगे अगर कि आप हमें पौधे लगाने हैं तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब भी हम कहते हैं कि आप वहाँ से गुजरें तो आप अपने पौधा जरूर देखें, उससे मिलें, अगर वो वृक्ष बन रहा है बड़ा हो गया है तो उसको हक करें, उससे गले मिलें, जाके उससे कहें कि देखो मैं तुम्हारे साथ में था, मैंने तुम्हें लगाया था, आज तुम इतने बड़े हो गए हो। इसी तरीके से हम बच्चों से कहते हैं, बड़ों से कहते हैं कि आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन पे पौधा लगाएं, आपके यहाँ किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, तो आप उस पर पौधा लगाइए, और याद रखिए ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, मेरी नानी है, और वो कितने बड़ी हो गई हैं और मैं उनसे जाके मिलता हूँ। तो इस तरीके से उनको सेंटिमेंटली हम उनको जोड़ते हैं अपने साथ में, तो बच्चे जो हैं उसको आगे बढ़ के जो है उसके लिए उत्साहित होते हैं और उस पर जो है कार्य करते हैं। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वो जो है वो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा रहा है, वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आकाशवाणी और आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ।
0: अभी आप सुन रहे थे वृक्ष मित्र श्री सुनील दुबे जी को। दोस्तों, इस धरती को संवारने का जो संकल्प सुनील दुबे जी ने लिया है वो काबिले तारीफ है, और हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि कोई देखे ना देखे, बस आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। वो कहते हैं, मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जाने वे, मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता चला गया।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन।
1: देखो जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में।
0: और अब कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का।
1: दूर वो जाने किसका गांव है।
0: दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग हम सभी करते हैं, पर वाकई इसका सही उपयोग क्या है ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं और अपना काफ़ी सारा वक्त इसे चलाने में बस यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग युवा किस तरह से करें, आज ये चर्चा हमसे कर रहे हैं सोशल मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रभात पोद्दार जी।
2: सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम भी आता है, यूट्यूब भी आता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है और बहुत ख़राब कंटेंट भी अवेलेबल है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं। भाई यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिससे हमने ही बहुत कुछ सीखा है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, या न्यूज़ हो सकती है, एनालिसिस, इकनॉमी है, फाइनेंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग उसके बारे में बात करते हैं, आप उसी की जगह आप कुछ और प्रकार का कॉन्टेंट ढूंढेंगे तो फिर वो आपके लिए फीड है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रकार का कंटेंट आप देख रहे हैं। अवेलेबल सब है। हाँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ा क्रिंज कंटेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो खराब कंटेंट है वो ज़्यादा है, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट ज़्यादा है। अगेन, आप किसको फॉलो कर रहे हैं ये निर्भर करता है और ये डिसीजन तो आप ही ले सकते हैं, ये हम तो नहीं बता सकते आपको किसको फॉलो करना चाहिए।
0: फिर भी अगर मैं ये जानना चाहूँ कि लोगों को बहुत टाइम तक ये पता ही नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और अक्सर रील्स एक के बाद एक आती चली जाती हैं और काफ़ी सारी रील्स देखने के बाद पता चलता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो एक जरिया जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो उनके बारे में अगर हम जानना चाहें।
2: देखिए, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है वो चाहता है कि उसके व्यूअर्स उस प्लेटफॉर्म पे रुकें तभी वो पैसा कमा पाएगा। तो उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि एक प्रकार से कहें कि वो छोटा छोटा नशे जैसा है वो, ताकि व्यक्ति रुका रहे उसमें और वो उस प्रकार के कॉन्टेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा देर तक रुके उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनका एक प्रकार से देखें तो बिजनेस है। जो पैसा कमाने वाला पार्ट है उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यूट्यूब का तरीका अलग है। अगर आप यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाते हैं तो जितने व्यूज़ आएंगे उस पर, उस व्यूज़ के अनुसार आपको पेमेंट मिल सकता है अगर आप मोनेटाइज चैनल हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पर नॉर्मली जो पैसा कमाया जाता है वो थोड़ा अलग तरीके से कमाया जाता है कि जैसे मान लीजिए मेरी अच्छी फॉलोइंग है मेरे को, तो मैं रील बनाऊंगा उसमें मैं किसी का विज्ञापन कर दूंगा। जैसे मैं कहूंगा ये कैफे में हम बैठे हैं तो ये कैफे बड़ा अच्छा है, इस प्रकार का विज्ञापन कर देंगे तो वो कैफे वाला आपको पैसा दे देगा। सेम वे और भी तरीके हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं और मतलब सौ तरीके और हैं। मैं कुछ बेच सकता हूँ, कैसे बेच सकता हूँ, जैसे जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, मैं कह दूंगा ये जो टी शर्ट मैं पहना हूँ अगर आपको अच्छी लग रही है तो नीचे लिंक है, इस पर आप क्लिक करें और आप खरीदेंगे तो आपको कुछ उसका एक पोर्शन मिलेगा। जी जी, तो मतलब तरीके बहुत सारे हैं और कमाने वाले लोग बहुत अच्छा भी कमाते हैं इससे, तो बिजनेस मॉडल भी है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इसमें एडिक्शन जैसा यूज़ कर रहे हैं और उसका जो एक नेगेटिव परिणाम है वो ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, पहले इसने कम कर दी, दूसरा AI जब से आया है तो लोगों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया, तो ये दो बड़ी तकलीफ वाली चीज़ें आजकल युवाओं को फेस करनी पड़ रही हैं
0: अक्सर।

0: ये लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद भी वो इस प्लेटफॉर्म का बहुत सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई सजेशन या कुछ बताना चाहेंगे उन्हें कि आप इस तरह से करें तो आप शायद इस चीज़ को एक इनकम का जरिया भी बना सकते हैं।
1: देखिए, कोई भी जैसे खासतौर से इंस्टाग्राम पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको विज्ञापन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेरा पेज फूड से रिलेटेड हो। मान लीजिए मैं ऑटोमोबाइल के बारे में चर्चा करता हूँ और एकदम से मैं टी शर्ट की बात करूँगा तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको आपका नीश पता होना चाहिए कि भाई मैं चर्चा कार्स के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर करता हूँ, तो कल मैं कार या किसी गाड़ी का विज्ञापन कर सकता हूँ, उसके स्पेयर पार्ट का कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड रिपेयरिंग सर्विसेज, वॉशिंग सर्विसेज कर सकता हूँ। फूड वाला हूँ तो मैं किसी रेस्टोरेंट का कर सकता हूँ, कैफे का कर सकता हूँ, लाउंज का, या कोई और फूड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका कर सकता हूँ। तो जो व्यूअर है उसको पता होना चाहिए कि आपके पेज की थीम क्या है, यानी आपके पेज पर मैं आ रहा हूँ तो आप किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिल्मों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप फिल्मों के रिव्यू डाल सकते हैं, आप किताबों की चर्चा करते हैं तो बुक रिव्यूज़ डाल सकते हैं। तो वो क्लैरिटी अगर आप रखेंगे और लगातार, कि अब होता क्या है कई बार हम लोग, बहुत सारे लोग ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो किसी और का कंटेंट लेके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो आपके पेज की कभी भी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बनती। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास लोग आएंगे कि भाई हमारा ये विज्ञापन आप क्यों नहीं कर देते। प्लस फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, किस प्रकार के व्यूअर्स आपके पास हैं। मान लीजिए आज मुझे, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक विज्ञापन किया, वो विज्ञापन था एक गोली का जो घुटनों की जो जोड़ के ऊपर जो होती है, तो उसका मैंने विज्ञापन किया। अब मेरी एज का व्यक्ति कर सकता है, कोई 18 साल का लड़का करेगा तो वो उस पे फबेगा ही नहीं, जिसे हम कहते हैं ना कि वो उसमें फिट नहीं है, कि 18 साल के लड़के के घुटने में प्रॉब्लम ही क्यों होगी। तो उसी प्रकार से अगर मैं ऐसे कोई टी शर्ट्स या ऐसे कोई क्लोदिंग का करूँ जो बहुत ही यंग लोग पहनते हैं तो वो मेरे पास नहीं होगा। तो आपकी एक प्रोफाइल है, एक पर्सनैलिटी है, या किस चीज़ पर आप बात करते हैं आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपका नीश है, फिर आपको उसमें विज्ञापन मिल सकता है।
0: इन सारी बातों को सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या? क्योंकि अक्सर लोग बहुत, इंस्टा भी हम भी यूज करते हैं और बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन कितना करते हैं सिर्फ फोटो डालने के लिए, उन पर लाइक और कमेंट्स देखने के लिए। तो वो अगर इस चीज को सीखना चाहें कि कैसे वो लोग एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं तो इसके लिए क्या जरिया है?
1: देखिए, सबसे पहला तरीका तो एक्सपीरियंस ही है, थोड़ा तो आपको घिसना पड़ेगा अपने आप को तो आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ ओरिजिनल आपकी भी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। बाकी सिखाने वाले भी बहुत हैं, जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि आप इतना पेमेंट करो तो आपको सिखा देंगे, यूट्यूब पे आप जाइए तो बता देंगे मोनेटाइजेशन कैसे कैसे करें, और ये मतलब अवेलेबल हैं। बट मुझे ऐसा लगता है केवल वो काफ़ी नहीं है, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए। अगेन, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं कर रहे, मुझे किसी ने बता दिया ये कर लो, मैंने वो कर दिया, तो मैं कुछ एडिशनल दे नहीं पाऊंगा मेरे व्यूअर को। तो आपको अपना दिमाग लगाना ज़रूरी है। आप मार्केटिंग के ऊपर किताबें पढ़े हैं, आप जहाँ से अलग अलग जगहों से आपके पास आ सकता है कॉन्टेंट आप लाइए और उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए। तो उसका कोई एक, वो क्या कहते हैं, एक दवाई की गोली नहीं कि आपने खाली आ गया, वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसको भी आप एज अ बिजनेस देखिए, इसको आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं इसमें मेहनत नहीं करूंगा लेकिन ये मुझे रिटर्न दे, ये किसी बिजनेस में नहीं होता। तो इसमें भी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको।
0: जबकि ये सेक्टर देखने में ऐसा लगता है कि शायद बहुत आसान है, सब कुछ रील डालना या सब कुछ ये, और इसीलिए शायद बहुत लोग इस फील्ड में आ भी जाते हैं।
1: देखिए, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कहा था कि असिमेट्रिक रिटर्न्स है सोशल मीडिया में। असिमेट्रिक रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ उसमें या किसी और काम में जितना मैं एफर्ट डालूंगा उसके प्रोपोर्शन में एक रिटर्न मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा था, मान लीजिए आपने किताब पढ़ी, किताब में पढ़ने में एक एफर्ट आया लेकिन हो सकता है उसके आइडिया से मैंने बहुत पैसा कमा लिया, सोशल मीडिया में मैंने जितनी मेहनत करके रीड डाली हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे, तन्मय भट्ट नाम है उनका, बहुत प्रसिद्ध हैं इस फील्ड में वो।
0: बहुत ही वैल्यूबल जानकारी और बहुत ही वैल्यूबल थॉट्स आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस खास विषय पर हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
1: धन्यवाद, बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रभात पोद्दार जी को। दोस्तों, आप भी अपने कीमती वक्त को बस यूं ही जाया ना जाने दें। सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना करें बल्कि खुद को निखारने और संवारने के लिए करें।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और कार्यक्रम में वक्त रूबरू होने का हमारे अगले खास मेहमान से। दोस्तों, आज के दिन को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। बच्चों के अधिकारों के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानकारी हमें दे रही है भोपाल की उप श्रम आयुक्त पी जासमिन अली सितारा।
1: सही कहा आपने, 12 जून जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। इस डे का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमें अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बाल श्रम से मुक्त कराना है, और इसको ही इंगित करता है ये हमारा दिन। इससे हम समाज को ये बताने की कोशिश करते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें बच्चों से काम नहीं कराना है, और ये पूरे दुनिया भर में इस दिवस को मनाया जाता है।
0: जानना चाहेंगे कि इस वर्ष की बच्चों से जुड़ी हुई थीम क्या है।
1: इस वर्ष जो बच्चों से जुड़ी हुई थीम जो दिया गया है 12 जून के उपलक्ष्य में, वो है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। इस थीम के साथ ही हमको इस जो 12 जून का जो दिवस है उसको हमको मनाया जाना है।
0: आप इन थीम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगी कि इन थीम पर चलते हुए हमारी सोसाइटी की क्या भूमिका हो जाती है।
1: इसमें जैसे फर्स्ट लाइन मैंने कही थी रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, इसका मतलब ये है कि हम जो बच्चों को एंगेज करते हैं या कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी संस्थान या कोई भी नियोजक बच्चों को यदि एंगेज करता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। रेड कलर ही हमको इंडिकेट करता है कि ये गलत है और खतरनाक है। तो हमको चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करना है, और उसको हमको टोटली हमारे समाज से उसको खत्म करने के लिए पूरा ही पूरा प्रयास करना रहेगा। फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन इसका सेकंड लाइन है, और वो लाइन ये कहना चाह रहा है कि हमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, हमको उसको सुरक्षित करना है। हमको उनके बच्चों के जो अधिकार हैं, जैसे उनका खेलना है, कूदना है, उनका शिक्षा है, वो अपनी जिंदगी, बचपन उनका जो जीना है, उस अधिकार को हम संरक्षित कर सकें और हम उनको एक अच्छा भविष्य दे सकें, जिससे कि वो अपनी जो करियर है उसको संभाल सकें और उसके लिए वो काम कर सकें। तीसरा जो इसमें पार्ट आता है वो डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स आता है। तो डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स का इसमें आशय ये निकल रहा है कि जो भी इन बच्चों के जो परिवार के सदस्य हैं, जो इनके माता पिता हैं, जो इनके घर के वयस्क और बड़े लोग हैं, उनको हम काम दें, और काम दें ताकि ये बच्चे काम नहीं कर सकें और इनका जीवन हम लोग सुरक्षित इसको कर सकें।
0: हम कई सारे बच्चों को घरों के अंदर या घरों के बाहर काम करते हुए देखते हैं, मन भी होता है कि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए या इनके लिए कुछ किया जाए। तो एक प्राइमरी तौर पर क्या किया जा सकता हो इन बच्चों के लिए कि इन बच्चों को जो है इनके प्राथमिक जो बच्चों के अधिकार हैं उनसे वंचित ना होना पड़े।
1: बिल्कुल सही बात है कि हम लोग अक्सर जब कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं शॉपिंग पे जाते हैं या कहीं हम निकल रहे हैं, तो हमने अक्सर देखा होगा कि कई ढाबों पे बच्चे काम करते हमको दिख जाते हैं, और ये मन भी करता है कि ये बच्चे जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वैसे इन बच्चों का भी एक पढ़ाई लिखाई का दौर हो और ये भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। पर हम लोग कहीं ना कहीं उसको देख के चुप रह जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा अनुरोध सभी जो सुन रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि यदि हम कभी भी ऐसे बच्चे को देखें और आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें न बोले या हम चुप रह जाएं, तो चुप

0: ही रहिए, आप उसमें बहुत सारे हमारे पास फोरम्स खुले हुए हैं जिसके तहत आप इसकी जानकारी आप दे सकते हैं, जिसमें कि नाम जो है शिकायतकर्ता का जो नाम है वो भी गुप्त रखा जा सकता है। और इसमें हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज भी है, टेलीफोनिक सर्विसेज भी है, और वेब पोर्टल पे भी आप अवेलेबल है इसमें, जहाँ पे आप शिकायत ऐसा दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098, जिसको हम 1098 भी बोलते हैं, और ये लोगों के जहन में भी है, सब जानते भी हैं। अगर फिर से इसको आप नोट कर सकते हैं, 1098 1098 भी इसको बोलते हैं। आप इस पे एक सिंपल कॉल करेंगे कि यहाँ बच्चा काम कर रहा है, तो उसमें तुरंत एक्शन होगा। दूसरा जो है, भारत सरकार ने एक पेंसिल पोर्टल बनाया हुआ है, उस पेंसिल पोर्टल पे आप सर्च करेंगे, वो इजिली उपलब्ध है गूगल्स पे, और आप उसमें अपनी जो है शिकायत, यदि आप कहीं बच्चा देख रहे हैं काम कर रहा है, कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको दिखती है जहां आपको लगता है कि मुझे इसको बताना चाहिए, तो आप उस पोर्टल के माध्यम से भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उस पोर्टल में भी ये सुविधा प्रदान की गई है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड करके भी एक्शन टेकन हो जाता है। तीसरा, आप श्रम न्यायालय, श्रम विभाग के सारे ऑफिसेस हर जिले में खुले हुए हैं, आप उसमें कर सकते हैं, जानकारी उनको वहाँ पे बता सकते हैं, आप नज़दीकी थाने में बता सकते हैं, आप नज़दीकी तहसील ऑफिस में बता सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा लगती है आप वहाँ पे इसकी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं।
1: अंत में क्या निवेदन करना चाहेंगी आप हर उस व्यक्ति से, हर उस पेरेंट से जो दूसरों के घरों में बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सोचकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं?
0: बिल्कुल सही बात है, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे मुंह से या हमारे जुबान से यही वर्ड निकलता है कि ठीक है जाने दो रहने दो, पर इस चीज़ को हमको बदलना होगा, क्योंकि अगर हम ही इसमें मोटिवेट नहीं करेंगे और हम ही इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर पूरा समाज ही पीछे ही रह जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने थ्रू, एक व्यक्ति भी अगर इसको शुरू करेगा तो उससे हमारा जो पर्पस है बाल श्रम को मुक्त करना, बाल श्रम को मिटाना, और उन बच्चों को जो कि मजबूरी में इसमें आ जाते हैं उनको हमको फ्री करके उनको एजुकेशन दिलाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा सभी से ये अपील रहेगा कि कृपया आप सब कहीं भी कोई भी ऐसा बच्चा काम करते देख रहे हो या बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हो, किसी भी संदर्भ में बच्चे से कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप उसकी सूचना दें। जैसा मैंने आपको बताया था 1098 बच्चा रेस्क्यू होता है या बच्चा आइडेंटिफाई होता है, तो हम लोग उनके पेरेंट्स के लिए ऐसे स्कीम्स रन करते हैं जिसके तहत उन बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है, उनके माता पिता को काम मिलता है, और उनके माता पिता जब सुदृढ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, तो बच्चा भी हमारा सुरक्षित होगा। तुरंत खबर कीजिए, उसमें हम रेस्क्यू ऑपरेशन करके उस बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे।
1: जी, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी को हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

बाल श्रम निषेध दिवस पर अभी आप सुन रहे थे भोपाल की उपश्रम आयुक्त पी जासिमिन अली सितारा जी को। दोस्तों, बच्चा कोई भी हो, ये सभी भारत का भविष्य है, तो सवारिए इस भविष्य को थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता के साथ।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है आज के नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का सफर, इस वादे के साथ कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंतजार कीजिए कल तक का, कल आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के एक नए अंक के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें अपनी रेडियो मित्र शिखा को, नमस्कार।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से

0: दुरुपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की

0: तब वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
1: We signed this year a free trade agreement with Europe.
2: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
4: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
3: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में

0: मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण

0: Cut 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इस गर्मी के मौसम में अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, सुबह हो गई है, दिन चढ़ आया है। ये सुबह का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया है, उम्मीद की किरणें लेकर आया है। ये जीवन की तरफ से भेजा गया एक नया संदेश है। संदेश ये है कि रात में जितना भी अंधेरा था, भोर की किरणें उसे प्रेम से विदा कर रही हैं। नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नया विश्वास आपके जीवन में भर रही हैं। तो आइए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कार्यक्रम में बातों और गीतों का सिलसिला।

जी हाँ श्रोताओं, बाहर हल्की सी गर्मी तो हो ही गई है क्योंकि दिन जो चढ़ाया है। सुबह की ठंडी हवा अगर आपने मिस की है तो आज जो गलती आपने की है उसे कल दोहराइएगा नहीं। कल सूरज के उठने से पहले आप उठिए और फिर बाहर निकलिए, देखिए इतनी प्यारी हवा होती है सुबह जो आपके मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होती है। प्रकृति स्नेहिल स्पर्श देती है सुबह, एकदम ऐसे लगता है जैसे आपकी पूरी थकान

मिट गई हो। पौधे आप देखते हैं जो बिल्कुल हवा के साथ ताल से ताल मिलाकर पत्ते उनके झूम रहे होते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट इतनी सुंदर लगती है ना दोस्तों सुबह सुबह, कि बस उस ऊर्जा से आप अपने पूरे दिन को बना सकते हैं। तो आप भी सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा अपनी आँखों से देखें, उसको महसूस करें।

श्रोताओ, सुरमई सवेरा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से, और इस कार्यक्रम में हम आपसे कर रहे हैं थोड़ी सी बातें और सुनवा रहे हैं कुछ सुरीले से नगमे। श्रोताओ, कई बार ऐसा होता है कि हम वर्तमान में नहीं जीते, हम कभी पुरानी बातों को याद करके दुखी होते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में आज का दिन गंवा देते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें जो पल अभी मिला है उसे अच्छे से जी लेना चाहिए। जो हो गया है उसे हम सुधार नहीं सकते, और जो होगा उसे होने से हम रोक नहीं सकते। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो काम हमें अभी मिला है, जो पल हमें अभी मिल रहा है, उसे हम अपना 100% दें और उसी में आगे बढ़ें।

श्रोताओं, कहा जाता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जो वर्तमान है उसे हमें अच्छे से जीना चाहिए और वर्तमान में ही हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा जो भविष्य है वो स्वर्णिम बने, सुंदर बने और हम उसको अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो आलस को छोड़ देना चाहिए। अगर आपने आलस को छोड़ दिया है तो समझिए कि आपकी आधे से ज़्यादा समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि अगर आपके जीवन में आलस नहीं होगा तो आप हर काम को पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, समय पर करेंगे। और जब आप समय पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, उसमें अपना 100% लगाएंगे, तो फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है।

श्रोताओं, आलस के लिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा देते रहे हैं कि भाई काम को टालिए मत, उसे सही समय पर पूरा कर ही दीजिए। और अगर आप पाते हैं दोस्तों कि अगर समय पर काम कर लिया जाए तो जो दिन है कितना व्यवस्थित और कितना सुकून से बीतता है। भाई जानते तो सब हैं लेकिन इसे अपनाने में कई बार थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, तो यही आलस तो है दोस्तों जो हमें छोड़ना है और काम को समय पर करना है।

0: श्रोताओं, सुरमई सवेरा का सफर जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 198वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, उसे खुशियों के साथ और हमें सजाना चाहिए। अपनी जो मुस्कान है उसकी ताकत आपको समझनी चाहिए, कैसे आपके चेहरे की मुस्कान जो है दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आती है। आपकी जो मुस्कान है वो किसी का मन हल्का कर सकती है, आपकी जो मुस्कान है वो किसी को संबल दे सकती है। तो आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मुस्कान से आपको नवाजा है, और इस मुस्कान को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा दोस्तों।

थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: श्रोताओं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करते हैं तो आपका पूरा दिन उसी तरह बीतता है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत थोड़ी सी धुंधली सी है, थोड़ी सी उदास सी है, तो हमारे दिन में इसी तरह की एनर्जी बनी रहती है। तो करना क्या है, हमें करना ये है कि सुबह सुबह अच्छा संगीत सुनिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी भोपाल के साथ। फिर देखिए कैसे आपका दिन बन जाता है और वही ऊर्जा, वही उत्साह पूरे दिन बना रहता है।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही

सत्याग्रह की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। सत्याग्रही के मन में विरोधी के लिए घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह का मुद्दा सच्चा और महत्वपूर्ण होना चाहिए। सत्याग्रही को अपने ध्येय की पूर्ति होने तक पीड़ा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस युग में प्रत्येक स्त्री पुरुष को आत्मरक्षा की कला सीखनी चाहिए। पश्चिम में इसके लिए हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वयस्क पुरुष को एक निश्चित अवधि के लिए अनिवार्यतः सैन्य सेवा करनी पड़ती है। सत्याग्रह का प्रशिक्षण सबके लिए है। इसमें आयु अथवा स्त्री पुरुष की कोई बंदिश नहीं है। इस प्रशिक्षण का अधिक महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक है, शारीरिक नहीं। मानसिक प्रशिक्षण में कोई बाध्यता नहीं हो सकती। ये जरूर है कि आसपास का वातावरण मन पर असर डालता है, लेकिन इससे बाध्यता का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। सशस्त्र प्रतिरोध की अपेक्षा सत्याग्रह सदैव श्रेष्ठ है। इसे तर्क से नहीं बल्कि प्रदर्शन द्वारा ही ज्यादा अच्छी तरह सिद्ध किया जा सकता है। सत्याग्रह का शस्त्र बलशाली का आभूषण है, यह दुर्बल का आभूषण कभी नहीं हो सकता। दुर्बल से यहां आशय मन और प्राण की दुर्बलता से है, शरीर की दुर्बलता से नहीं। ये सीमा एक गुण है जिसकी कद्र की जानी चाहिए, कोई अवगुण नहीं जिसकी निंदा की जाए। एक और भी सीमा है जिसे समझना जरूरी है, और वो ये कि सत्याग्रह का प्रयोग गलत उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया जा सकता। सत्याग्रहियों के जत्थे प्रत्येक गांव में और शहरों में इमारतों के प्रत्येक ब्लॉक के लिए संगठित किए जा सकते हैं। हर जत्थे के सदस्य ऐसे लोग हों जिन्हें संगठनकर्ता अच्छी तरह जानते हों। इस मायने में सत्याग्रह और सशस्त्र सेना में फर्क है। सेना में भर्ती के लिए राज्य प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करती है, लेकिन सत्याग्रह के जत्थे में सिर्फ वे ही लोग भर्ती किए जा सकते हैं जिनका अहिंसा और सत्य में विश्वास हो। इसलिए जत्थे में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में संगठनकर्ताओं को गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब मैंने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी तो इसमें आपराधिक अवज्ञा के लिए कोई स्थान नहीं था। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सत्य का प्रचार हिंसा के द्वारा कभी नहीं किया जा सकता। जिन्हें अपने उद्देश्य की न्यायोचितता में विश्वास है उनमें असीम धैर्य होना चाहिए, और सविनय अवज्ञा करने के अधिकारी वही हैं जिनके हाथों आपराधिक अवज्ञा या हिंसा कभी हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संयत और क्रोधोन्मत्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति सविनय अवज्ञा और आपराधिक अवज्ञा एक साथ नहीं कर सकता। और जिस प्रकार अपने मनोवेगों पर विजय पाने के उपरांत ही व्यक्ति आत्मसंयम के गुण का विकास कर सकता है, उसी प्रकार देश के नियमों के पूर्ण और स्वैच्छिक पालन का अभ्यस्त हो जाने के बाद ही व्यक्ति में सविनय अवज्ञा की क्षमता उत्पन्न होती है। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग, और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1942 लव स्टोरी फिल्म का वो गीत जिसे गाया है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम

0: पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब आपको सुनवा रहे हैं अनवर फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है क्षितिज और शिल्पा राव ने, संगीत है मिथुन का, गीत लिखा है हसन कमाल ने।

ये गीत आपने सुना जावेद अली की आवाज़ में। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, संगीत था AR रहमान का, फिल्म का नाम था गजनी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत जिसे हमने चुना है फिल्म हे बेबी से। सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज़ है। गीत लिखा है समीर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

और अब आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में विशाल मिश्रा का लिखा नगमा। संगीत हिमेश रेशमिया का है। फिल्म का नाम है हैप्पी हर्डी एंड हीर।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देवगुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार ID बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जाँचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

स्वागत है हमारी सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम महिला संसार में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। सखियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। आप हमसे कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं फोन नंबर 2660902 पर और हमारा एसटीडी कोड है 0755। सखियों, आप हमसे जुड़कर अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं, तो उठाइए फोन, करिए हमसे बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। सखियों, आज विश्व

0: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। आप हमसे कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं फोन नंबर 2660902 पर और हमारा एसटीडी कोड है 0755। सखी आप हमसे जुड़कर अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं, तो उठाइए फोन, करिए हमसे बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। सखी आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बचपन का असली रंग किताबों, खेलने और सपनों में होता है सखियों, मजदूरी या श्रम की मजबूरियों में नहीं। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को सपनों की उड़ान भरनी चाहिए, उस उम्र में अगर उन पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए तो हमें और आपको सजग रहने की जरूरत है। सखियों, बाल श्रम का सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। वह शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं और उसके बेहतर भविष्य के अवसर भी कम हो जाते हैं। बाल श्रम रोकने सरकार ने भी कानून बनाया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का श्रम करना कानूनन अपराध है। सरकार के साथ साथ बच्चों के माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी पढ़ाई को महत्व दें। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, उनके हाथों में काम का बोझ नहीं बल्कि किताबें और सुनहरे सपने होने चाहिए। और इसीलिए सखियो, आप सब भी अगर कहीं देखें कि बच्चे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तुरंत सरकार को संपर्क करें। और अब आइए, हमें इंतजार है आपके फोन का। हेलो
1: हेलो
0: सखी
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आप नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं?
1: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी रानू जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है कौन है जो सपनों में आया।
0: अच्छा, और इसका कौन सा गीत?
1: और इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है, उदित नारायण अलका याग्निक ने गाया है ये सॉन्ग।
0: अच्छा, कौन है जो सपनों में आया, यही टाइटल गीत आपको सुनना है?
1: पुरानी वाली नहीं, मतलब थोड़ी सी न्यू है।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रानी जी।
1: डेडिकेट आपको रहेगा और मेरी बहन नंदिनी को रहेगा।
0: जी जी, बहुत अच्छा, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो, सखियो आप सुन रही हैं कार्यक्रम महिला संसार के अंतर्गत आओ सखी बातें करें। सखियो आज आप हमसे जुड़ सकती हैं सीधे हमसे और अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रही हैं? और
1: जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जी जीनत जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी, मुझे प्रेम ग्रंथ का सुनना है।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगी इस फिल्म का?
1: प्रेम ग्रंथ है ना?
0: हाँ जी, इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगी
1: हाँ,
0: आप?
1: वो वाला, तेरी कसम में हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा।
0: जी जी और बताइए जीनत जी, कैसा मौसम है इंदौर का?
1: इंदौर का बादल हो रहे हैं अभी तो।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है, अच्छा है, मतलब मौसम गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है ना?
1: जी, फर्स्ट टाइम लगा मेरा इसमें।
0: अच्छा, अरे
1: जी
0: वाह, तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी शुक्रिया मैम।

0: हेलो सखी। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं बताइए।
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
0: जी नंदिनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज आप?
1: आज जो सॉन्ग सुनना है मूवी का नाम है सत्या।
0: सत्या, इसका कौन सा गीत?
1: उसका सॉन्ग है सपने में मिलती है।
0: जी, बहुत अच्छा गीत सुन चुना है आपने।
1: डेडिकेट मेरी जानू दीदी को रहेगा जिनका फर्स्ट कॉल लगा था।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। आप दोनों बहनों का कॉल लग जाता है ना
1: जी,
0: और चलिए अच्छी बात है ये। और बताइए नंदिनी जी, क्या चल रहा है अभी
1: फिलहाल? में अभी बैठे थे और हम अभी आज ही मतलब कल शाम को वापस आए थे अपनी बुआ के यहाँ से, तो हम आज प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: बढ़िया बढ़िया, मतलब छुट्टियों का आनंद आप भी ले रही हैं, है ना? और इसी आनंद के साथ आइए, लीजिए इस गीत का भी आनंद।
1: ओके मैम, नमस्ते।

0: सखियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला संसार के अंतर्गत सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। हमारी सखी हमसे जुड़ चुकी है।
1: नमस्ते
0: जी, अपना नाम फिर से बताइए एक बार।
1: शिवानी मेहरा, नीमच से।
0: जी शिवानी जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? हेलो
1: मैम, मूवी का नाम है हीरो मूवी का,
0: फिर से बोलिए शिवानी जी।
1: बिछड़े मूवी का नाम है हीरो।
0: हीरो का कौन सा गीत?
1: बोले बिछड़े भी तमाम कल परसों।
0: जी जी शिवानी जी, बताइए क्या करती हैं आप, क्या शौक हैं आपके?
1: खाना बना रही थी और खाना बना मेरे प्रोग्राम चल रहा, फोन ट्राई कर, रोटी बना के पटक के फोन ट्राई करने लग, मेरे फोन एक बार में लग गया।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है ये तो, आपने ट्राई किया और आपका फोन हमसे जुड़ गया और आपकी हमारी बातें हो रही है। क्या शौक रखती हैं आप?
1: मैं सिलाई का शौक रखती हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, आप सिलाई का शौक रखती हैं। तो आइए, आपके शौक के साथ ही आप हमारे कार्यक्रम को भी सुनती रहें और आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: जी मैम, थैंक यू।

0: सखियों, आप सुन रही हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। आप हमसे कार्यक्रम में जुड़ सकती हैं फोन नंबर 2660902 पर और हमारा एसटीडी कोड है 0755।
1: हेलो जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: सपना बात कर रही हूँ गुना से
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी सपना जी?
1: मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन,
0: इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: और गाने के बोल हैं दूल्हे की साली और हरे दुपट्टे वाले।
0: अच्छा जी, कुछ शादियों का सीजन आने वाला है इसीलिए आप ये गीत सुन रही हैं या घर में कुछ प्रोग्राम होने वाला है?
1: मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: 19 तारीख की।
0: जी जी जी, चलिए बढ़िया, अच्छा है, तभी आप साली है ना
1: जी,
0: इसलिए गीत सुन रही है, बढ़िया, अच्छा है। चलिए बधाई हो आपको आपके घर में जो शादी है उसके लिए, और आइए सुनते हैं ये गीत।
1: ओके।

0: हमारी अगली कॉलर हमसे जुड़ गई हैं। हेलो, हमारी कॉलर का शायद कॉल कट चुका है, वो नेटवर्क में नहीं है। सखियो, आप जब भी हमें कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहें और तभी हमें फ़ोन करें ताकि आपकी और हमारी बात अच्छे से हो पाए। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं?

0: सागर से बोल रहे रश्मि तिवारी
1: जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: जानवर मूवी का।
1: जानवर का कौन सा गीत?
0: मौसम की तरह तुम भी बदलती हो।
1: जी जी, मौसम की तरह तुम ना बदल जाओ। जी जी, ठीक है जी। और रश्मि जी, क्या कर रही थी आप अभी?
0: बस कुछ नहीं, खाना सीधी थी भाई। अब भाई,
1: अच्छा, और कौन कौन से गीत सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं आप हमारे आकाशवाणी के?
0: सब सुनते हैं।
1: वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए
0: आकाशवाणी सुनते हैं, सागर का फोन लोग भी सुनते हैं, छतरपुर सुनते हैं।
1: जी जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये रश्मि जी कि आप सभी प्रोग्राम सुनती हैं, ताकि आप हमारे हमसे जुड़ी भी रहती हैं और नई नई जानकारियां भी आपको मिलती हैं। आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

सखियों, इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला संसार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन, राग है मंगल भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे रोनू मजुमदार का बांसुरी वादन राग था मंगल भैरव। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1-800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन कराया जा सकता है। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर कल भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। भोपाल के हलालपुरा स्थित पटाखा दुकान में देर रात आग लग गई, जिससे 70 ऊपर तक की लपटें उठीं। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस विश्व कप में 12 टीमों द्वारा 7 स्थानों पर 33 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को होगा और भारत के प्रख्यात निशानेबाज और एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज निधन हो गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इंतजार केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आशाओं का खिलना भी है। जिस तरह तपती हुई धरती आसमान में उमड़ते बादलों को निहारती है, सूखे खेत

0: जिस तरह बारिश की बूंदों के लिए बेचैन रहते हैं, जिस तरह अंधेरी रात भोर की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जागती है, जिस तरह बंद कली सूरज की ऊष्मा लेकर मुस्कुराने का इंतजार करती है, हमें मालूम है कि आप भी ठीक उसी तरह अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये गीत आपके लिए केवल सुर नहीं होते, ये आपके लिए कभी यादों की खुशबू होते हैं, कभी बीते हुए पलों की दस्तक होते हैं, कभी ये गीत दिल की अनकही बातों का आईना होते हैं, तो कभी आपके एहसासों का दरिया होते हैं। तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं। आइए कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। दीदी,
0: राजेश जी, कैसा है देवास और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, जैसा भोपाल वैसे ही ये है। यहाँ पर देवनोट प्रेस है और जैसे माता चामुंडा की वो है पहाड़ी पे
0: जी,
1: और औद्योगिक क्षेत्र है ये।
0: जी जी जी जी। तो राजेश जी, कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: आज? गीत ये सितारी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, तुमको पिया दिल दिया लता जी और उषा मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या बात है,
1: आपका संगीत है,
0: बहुत ही मीठा गीत है लता जी और उषा जी की आवाज में, और मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए,
1: हमारे लेटर का ध्यान रखो कि लेटर बहुत कम लिए जा रहे हैं इसमें।
0: चिट्ठियाँ आप लगातार लिखिए, पत्र आपके शामिल होंगे, ठीक है? तो राजेश जी, आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं और आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रज्ञा कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद। आप
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम। रात बारिश भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे होकर फोन लग गया, और भी अच्छे हो गया।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो
1: जी
0: चल
1: जी
0: रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत।
1: मैम, गीत संगीत खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रज्ञा कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम, रात बारिश भी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे होकर फोन लग गया, और भी अच्छे हो गए।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो चल
1: जी
0: रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत।
1: जी मैम, गीत संगीत, खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे लता जी और रफी जी की आवाज में, अगर वो आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो।
1: दिल का हीरा, मूवी का नाम, एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत,
1: जी मैम,
0: एक पत्थर दिल को, ठीक है। तो चलिए,
1: जी मैम,
0: लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत आप तक भेजते हैं। आपके दोनों ही पसंदीदा कलाकार, उनकी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते, मैं शीत गंगा मेहरा बात करें नीमच से।
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं
1: जी? अच्छे, मैम आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं
1: जी मैम।
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होता है वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है
1: मैम? मूवी का नाम है बेवफा सनम और गाने बोले दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा।
0: दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत आभार आपने फोन किया।
2: बिखरे बिखरे जुल्फ़ें।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: बस घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथी है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल आनंद के साथ समय गुजरता है ना?
1: जी, अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: मैं नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1 आध घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है।
1: जी, पूरा वक्त का रेडियो, सब चैनल, कोई से भी,
0: जी,
1: इंदौर है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा
1: जी,
0: गीत
1: मैं
0: सुनेंगी आज?
1: वक्त पिक्चर का सुनना चाहूंगी। ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, ये वाला। जी,
0: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
1: ये
0: बहुत ही,
1: मेरी मम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा, क्योंकि वो भी सुनती हैं।
0: जी
1: मम्मी का
0: जी
1: नाम है
0: जी
1: मंदसौर में रहती है, नूर भी, अंजुम,
0: हाँ।
1: गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
0: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक
1: जी,
0: भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम पंतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर के आकाशवाणी की प्रोग्राम सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, नाम बनता है मेरा। हाँ, नाम बनता है मेरे रेडियो में।
0: जी जी। और
1: ग्वालियर पर बहुत प्राण होता है ग्वालियर का।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं पानी कार्यक्रम, आपकी परमाश कार्यक्रम।
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: भोपाल कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे, ग्वालियर बंद हुए कार्यक्रम से चंदा गाड़ी बहुत परमाश।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गोरा काला पिक्चर सुनवा देना, मुझे जता की आवाज में धीरे धीरे सुनना ले।
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, प्राण गान पसंद नजर।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
1: और
0: हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी? चलो
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, आप प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं,
0: जी
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले। अच्छा,
0: अच्छा, तो आप
1: रिटायर
0: शिक्षक
1: हो
0: थे?
1: चुके, मैंने पुजारी जी कर काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, तो क्या करूँ इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना?
1: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का,
0: जी
1: मंदिर की
0: जी
1: सेवा कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ
1: हाँ
0: ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा,
1: हाँ
0: जाहिर सी
1: रेडियो तो
0: बात है।
1: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
1: हाँ, पुराना रेडियो है मैडम।
0: जी।
1: आज मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी, ये आकाश में अमर है और ये सबके दिलों में बसी है। आकाशवाणी
0: बिल्कुल, सबके दिलों में
1: सबके
0: बसी है।
1: दिलों में। और
0: और
1: हमारा एक नीमच में मेरा भाई है, 82 साल का, उनका नाम आरसी जैन,
0: जी,
1: वो भी बहुत पुराने गाने के बहुत आशिक है। तो
0: जी। तो देखिए,
1: ये गाना
0: आकाश,
1: उन्होंने मुझे दिया है फागुन का।
0: फागुन फिल्म का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कौन परदेसी मेरा दिल ले गया।
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत।

0: हाँ बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ सुबह से शाम तक के।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव है
0: मेरा
1: आपके।
0: ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
1: जी, तो इसी तरह से
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी
1: कहते हैं सुबह सवेरे सूरज आता, सुबह सवेरे सूरज आता, भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है और ये आह्वान करता है कि अपने जिंदगी में जो कुछ हम करें वो प्रकाशमय हो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो संतोष,
1: चंचल और शीतल आवाज की धनी, या यूं कहे कि मधुर आवाज की मलका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन भी रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए

0: कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें। लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है, और इस
0: जी
1: बीच हमारा जो बघेलखंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है, और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में।
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: मैम।
0: इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलते हैं ना, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है। आपका जो कार्यक्रम आता है वतन कराग, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है आपके
0: जी
1: कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो
0: जी
1: बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: क्या
1: आकाशवाणी
0: बात
1: मध्य
0: है
1: प्रदेश के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
1: हाँ, मूवी का नाम है धड़कन, और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें 2 लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी ज़िंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपली अबराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चड़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के? अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहे अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज, बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्ही से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्ही से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम बताइएगा
1: जी
0: अपना।
1: मेरा नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध
1: हाँ,
0: हैं।
1: वर्ल्ड फेमस है
0: बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे
0: हैं?
1: अभी छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे हैं।
1: हाँ जी
0: अच्छा जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक
1: जी
0: आसानी हो जाती है। तो हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फ़ोन किया था। तो
1: जी
0: जीनत
1: मैम,
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवाए बताइए।
1: मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है,
0: गीत के बोल,
1: यार बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत
1: जी
0: गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तलाश फिल्म का। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आपने
1: मैम।
0: हमें फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए, मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसकी
1: आकाशवाणी अपनी जगह क्लियर है। और आकाशवाणी से कोई भी अभी ऐसा वो नहीं है कि जो आकाशवाणी ना सुनते हों लोग।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी की एक अपनी जगह है जो बनी हुई है, और हमारा तो ये मानना है कि ये जो जगह बनी हुई है ये हमारे श्रोताओं की वजह से बनी हुई है।
1: देखिए श्रोता और आकाशवाणी
0: जी,
1: ये एक दूसरे के पूरक है।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी है, श्रोता नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, और श्रोता है आकाशवाणी नहीं है कोई मतलब नहीं।
0: तो चलिए ये जो एक सुंदर यात्रा हम लोग की मिली जुली सी जो चल रही है ये जारी रहे। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि फरमाइश क्या है आपकी।
1: जी बिल्कुल सुनीता जी, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।
0: गीत के बोल,
1: गीत के बोल है कि आई जवानी मोदी चुनरिया सर से सर की जाए। और ये गीत हमारे प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और जो है दिनकर सिंह जी को और विजय कुमार पांडे हो गए और मणिराम पाल जीतन पाल जी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: अच्छा, तो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है। हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना देते दो लाइन।
1: क्या बात है, तो फिर इसी गीत को बुलाऊं कि कोई बुंदेलखंडी गीत
0: नहीं? अरे आपने तो लालच ही दे दिया। तो पहले तो एक बुंदेलखंडी गीत सुनाइए, फिर ये गीत गुनगुनाइए, ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले करें।
1: बुंदेलखंडी गुनगुना रहा हूँ
0: जी जी।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत प्यारा गीत।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही मधुर गीत। और देखिए गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालू गिरे उधर को नांगन सी लहराए।
1: फूलचंद पाल जी, आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुने, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

Dim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana nadir da tanum tana dere nadim tana और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू

त्रेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। तो आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सहरा फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत रामलाल का है। पसंद आप सब श्रोताओं की मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है अंतिमा और सोना ने।

हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज़ भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सब के साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब आगे।

भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।

0: बोलू?
1: तुझे कहती है नारायणी, मैं अभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना पूछेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायणी, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मर कर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भार से।
0: नहीं नहीं नहीं स्वामी, नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। पति अपंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी,
0: ये क्या? मुन्ना रोने लगा, इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं? मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी, नारायणी तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा। तू जा।
0: कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा, जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं, नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने, अच्छा हाँ बेटा, मेरी गोद में आ जा। अच्छा मत रो, मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्या, तो और जोर से रोने लगा।
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: तो मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं?
2: अरे शिभू, घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिबू, जब तू कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू, आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
4: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
4: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
4: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
4: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख, इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
1: अच्छा नारायण, ठीक है।
4: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।

0: सुनो भाइयों, सुनो क्या कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
1: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका, और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
2: कैसा है डिब्बा?
0: यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
1: किस लिए काका?
0: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ सभी लोग इस डिब्बे में पैसे डालो।
3: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
4: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
0: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे। हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसान और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
3: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं। ऐसे फिरा, अरे चलो चलो भाई, अरे चलो अपने काम पर चलो।
0: चले गए, सब चले गए।
1: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
0: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
1: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
0: सच?
1: हाँ काका। काका मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
0: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद,
1: काम बंद।
0: सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दे। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
4: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
3: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
5: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
3: अच्छा,
5: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
4: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? है? लिख सकता है क्या?
5: हाँ।
4: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
3: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा
4: है। लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
3: सही कहते हो भैया।
5: बापू।
3: हाँ क्या है?
5: मैं खेलने जाऊं?
3: आ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
5: ठीक है
3: बापू। हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ घर घराहट है, ना कुछ।
4: हाँ लीचू, ऐसा लगता है जैसे

0: साईं भी चैन की सांस ले रही है। शांत और निर्मल साईं, किसी सपने जैसी।
1: सही कहते हो शिव।
0: ले, भंग हो गई ना साईं की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
2: अरे
0: क्या हुआ,
2: ये तो अपना यशवंत है। इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है।
0: खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास?
1: अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है उसी से खरीदे होंगे और क्या।
0: अच्छा अच्छा, सही कहते हो भैया।
2: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
0: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल चल
2: आज चल।

0: मेरे मजदूर भाइयों, हमारी हड़ताल को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की।
1: हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: शांत भाइयों शांत, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आज हमारा जुलूस कंपनी के दफ्तर तक जाएगा, ताकि हम अपनी आवाज इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचा सके। पता चला है कि बलबीर स्वामी के साथ लोकल लीडर जी भी वहीं पहुंच रहे हैं।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
0: नहीं भाइयों, मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। बोलो मजदूरों की जय हो, मजदूरों की एकता की जय हो।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: भाइयों, अब हमारा जुलूस और आगे बढ़ेगा और कंपनी के दफ्तर की ओर जाएगा। आप लोग मेरे पीछे जोर शोर से नारे लगाएंगे, बोलो लड़ेंगे,
1: जीतेंगे,
3: जीतेंगे,
1: जीतेंगे,
3: लड़ेंगे,
1: जीतेंगे,
3: जीतेंगे।
0: अभी तो ये अंगड़ाई है,
1: आगे बड़ी लड़ाई है।
0: जो हमसे टकराएगा
1: चूर चूर हो जाएगा।
0: कंपनी होश में आओ,
1: होश में आओ।

0: शाबाश यशवंत शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
1: अरे
0: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
1: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब खुशहाल होंगे।
0: तू चिंता मत कर यशवंत, बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम थूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
1: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
0: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस तुम मजदूरों को संभालो।
1: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
0: हाँ यशवंत, एक बात और।
1: क्या?
0: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
1: हाँ?
0: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
1: लेकिन बलबीर, पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था। 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
0: देखो शास्त्री जी, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर

0: भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
1: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा, तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
0: देखो मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
0: देखो तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
1: अब हाँ समझ गया बलबीर।
2: आराम से।
3: अरे नारायणी, ये तू मुझे कहाँ ले आई?
2: नहा लो ना।
3: नहा लो? पर क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है, ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
2: मत करो, जल्दी से नहा लो, जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ
3: अरे कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायण। देख नारायण, मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायण, मैं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
2: नहाने से डरते हो?
3: नहीं,
2: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
3: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शिव बेटा है, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा, अरे हो, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है, अरे बचाओ,
2: अरे
1: ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है। नारायणी, बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: वो यशवंत बाबू 1 महीने से ये नहाए नहीं थे, मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
4: अरे भैया बाबू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
5: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
4: अरे भैया बामू, गरीब ना होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम ना लगती।
5: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
4: और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
1: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
4: सकले भैया बाबू,
1: बेवकूफ कहीं के। नारायणी, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
2: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू हाँ? मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नारायणी नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती। मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार पाती।

0: अरे शिव भैया,
1: लिच्चू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीव शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिच्चू भैया। अरे भैया, हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए हैं।
0: शिव भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है, इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे।
1: हाँ हाँ लिच्चू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: लो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिबू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लड़ने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
1: अरे ना, अरे लीजिए ना, मत बोल ऐसा, अरे मत बोल। भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीजू, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
0: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।
1: हाँ लेचू, हाँ मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
0: अरे क्या, अरे शिबू,
1: अरे सच कहता हूँ मैं। अरे नारायण, अरे तू भाग कर क्यों आ रही है, अरे बोल ना क्या बात है।
2: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, ये लो 5 रुपए, लीचू के साथ जाकर दूध ले आओ, मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
1: अरे पर सुन तो सही, तू जा कर आ रही है।
2: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है, 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे हैं, उन्होंने ये रुपए दिए हैं। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए, मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
1: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
0: शिवू, शिवू चल उठ, मेरा सहारा ले ले, अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
1: खलासी लंगर, अरे वाह वाह, अरे क्या मजे की बात कही है तूने। अरे बात सुन, देख 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा, बाकी बचे 4 रुपए।
0: अरे 4 रुपए में तो शिवू हम दोनों छक जाएंगे।
1: हाँ वाह वाह, अरे अच्छा एक बात तो बता लीजू, क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
0: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है, उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
1: ठीक कहता है तो। अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी सड़ाते हैं।
0: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक, शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है। साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए सड़ाते हैं।
1: अच्छा।
0: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं। अरे वाह लीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
0: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
1: अरे, हाँ।
0: अरे सब खेत बिगड़ जाएगा।
1: हाँ।
0: हम दोनों को साथ देखकर वैसे

0: भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
1: ये बात तो ठीक है। चल चल चल चल चल चल। अरे अरे मेरा हाथ तो पकड़। चल चल चल चल चल।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा और 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अलसाई सी इस दोपहर के खूबसूरत से पलों में हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई। बहनों, हर बच्चा मुस्कुराना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, मगर कई बार गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, कोई मजबूरी या विपरीत परिस्थितियों के कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनसे उनकी मासूमियत मानो रूठ सी जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक

विकास प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। इस दिन का उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बच्चों से मजदूरी कराना गैर कानूनी है, अमानवीय है। बचपन में बच्चों को पढ़ने लिखने और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण जोखिम भरे काम करना चाहिए। हर बाल श्रम से जुड़ा बच्चा यही महसूस करता है कि बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, कब कहाँ और कैसे छूट गया बचपन। यह दिन बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी और अशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल श्रम का अर्थ ऐसे शारीरिक अमानवीय कार्यों से है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा को छीनते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहनों, बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। बाल मजदूरी न करवाएं और न ही इनका समर्थन करें। बाल मजदूरी कराने वालों के प्रति शिकायत दर्ज कराएं। गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। लोगों को भी बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करें। बच्चों को उनकी उमंग और मस्तियों में उड़ने देना चाहिए, ताकि वे विकास करें, आगे बढ़ें और समाज के विकास में सहयोग देकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने। उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, लौट कर बचपन के फिर वो ज़माने नहीं आते। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, मगर बहुत खूबसूरत होता है किसी के लिए ज़रूरी होना।

अभी बहने सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के

0: अभी बहने सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के आगे कभी ना मलाल करो, सीखो तुम आत्मरक्षा के हुनर यहाँ, ताकि खुद पर तुम हमेशा एतबार करो। हाँ बहनों, हमारा जीवन अनमोल है और इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अपने मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक जागरूकता का मूल मंत्र है। यह हुनर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति या खतरे के समय स्वयं की रक्षा करने और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में जटिल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा का सशक्त माध्यम है सेल्फ डिफेंस। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मरक्षा के गुण सीखें और खुद को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे प्रशिक्षण ले सकती हैं, साथ ही परिस्थिति के अनुसार आप हिम्मत से काम लेते हुए आत्मरक्षा कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस हमें शारीरिक मानसिक रूप से खतरे के लिए तैयार रखता है। सतर्कता, जागरूकता, सही समय पर सही निर्णय और निडरता से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा सीखने से आप बिना डरे कहीं भी आ जा सकती हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। तो बहनों, आत्मरक्षा का हुनर जरूर सीखिए और जीवन को सरल, सुरक्षित बनाइए और निडर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। सेल्फ डिफेंस सम्मान से जीने की आज़ादी देता है, वहीं आत्मरक्षा साहस और जागरूकता का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की ढाल है। छोड़कर उम्मीदें गैरों से मदद की मुसीबत की घड़ी में आत्मरक्षा का हुनर भी जरूरी है। पलक पर अगर हों आंसू तो ये नहीं काफ़ी, इन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ बहनों, अपने हुनर से समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं कवयित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवयित्री बहन है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला।
1: मेरी एक कविता है जिसका की शीर्षक है स्तब्ध। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती हमारी गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां तरताल सूख रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही कम शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कविता है। और आखिरी के चार लाइनों में आप देखेंगे कि आप क्या करिए जिससे कि आप धरती की मदद कर सकें। तो ध्यान चाहूंगी, तो सुनिएगा। तप्त स्तब्ध धरा प्रारब्ध, मानव तृप्त करे संतृप्त, जलता अलाव गई शीतल छांव, हरियाली लुप्त खुशहाली विलुप्त, तपती बयार झुलसा संसार, यूं कहां गया माँ का दुलार, सूखी नदियां सूखे तरताल, यूं उठा बवाल जीवन बेहाल, कर दे उद्धार कर ले उपकार, यूं दोहन छोड़ यूं मुह न मोड़, करना विक्षिप्त अपना भविष्य, तू हाथ बढ़ा कुछ कर भला। तो ये एक कविता है जो धरती माँ को बचाने, उसका दोहन बचाने का आह्वान करती है। यह कविता मैंने लिखी है सर्कस के बारे में। जिंदगी को एक सर्कस की तरह मैंने इस कविता में बताया है, तो सुनिएगा। सर्कस, जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमरकस, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं धीमा कहीं एकदम तेज, सावधान कहीं गिरना नहीं, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कभी टूटे कांच पे चलना, जीवन भी तो है ऐसा ही खेल, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, जैसे हर मुश्किल को ठेंगा दिखलाए, जिंदगी एक लंबा सर्कस, वो एक मदारी सबको नाच नचाए, कौन कहाँ पर कैसे करता

दिखलाएगा इसका लेख जन्म से ही सब लिख कर लाए। सब मिलकर खेलेंगे खेल, सब मिलकर खेलेंगे खेल, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, अगले पल उसका भी निकास चले, अगले पल उसका भी निकास चले। क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कोई कभी ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, जिंदगी एक सर्कस। ये मेरी एक कविता है हरी चूड़ियाँ। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में लड़कियाँ आज भी दहेज की आग में जलाई जा रही हैं या किसी न किसी तरीके से सताई जा रही हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ये एक लड़की का संकल्प बताती हुई कविता है कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए। तो ध्यान चाहूँगी, हरी चूड़ियाँ। हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, गाँव का उसके वो खेत भी तो था हरा, हरी खनखनाती पहने थी वो चूड़ियाँ, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा। नववधु के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, नववधु के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, उन हरी चूड़ियों की खनक से गूंज गए, पर ससुराल का सावन वैसा अल्हड़ ना था, वो मायके के आंगन जैसा मदमस्त ना था, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, मेहंदी भी अब की बार रंग चढ़ी ना थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, सासू माँ के तानों से जैसे रंग उसका उड़ गया था, हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती। रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, दहेज की आग में हरियाली खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, दहेज की आग में हरियाली कहीं खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, कमज़ोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, कमज़ोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, लाख कोशिश करे ज़माना ये मुझे अब दबा न सकेगा, लाख कोशिश करे ज़माना ये मुझे अब दबा न सकेगा। एक कविता ये मेरी है अच्छा ही हुआ, कविता का शीर्षक है अच्छा ही हुआ। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, या कुछ हमारे साथियों ने हमारी मदद नहीं की, या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने हमारा फेवर नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम बड़ा दुख फील करते हैं। मगर आप कभी पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देखिएगा कि अगर आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो ध्यान चाहूँगी, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिनको हम चाह किए, जिनको हम चाह किए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला।

0: अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अपने को इतना तपाया, अपने को इतना तपाया कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया।
1: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ। कवयित्री बहन थीं आराधना सिंह बुंदेला। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते।

अभी बहने सुन रही थी कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का। बहनों, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए साक्षरता बहुत ज़रूरी है। वहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए बहुत ज़रूरी है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी धन को समझने और उसके प्रबंधन की बुनियादी कला। इसके माध्यम से महिलाएं अपने धन को सोच समझकर कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीख सकती हैं। यह कौशल हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कमाई, बजट बनाना, बचत करना और उधार प्रबंधन। बहनों, वित्तीय साक्षरता बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाती है, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन की शर्तों को समझने से वहीं हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। महंगाई से निपटने और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी निवेश जरूरी है। साथ ही वित्तीय साक्षरता से हमें आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सही बजट और बचत से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वित्तीय साक्षरता वास्तव में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रीढ़ है। वित्तीय ज्ञान महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने और धन सृजन के अवसरों को जानने में मदद करता है। बढ़ती उम्र या किसी अनहोनी की स्थिति में यह ज्ञान एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बहनें आर्थिक रूप से जागरूक होती हैं तो वे घर का बजट बेहतर तरीके से चलाती हैं और संकट के समय के लिए बेहतर बचत कर पाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से साक्षर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहनों, वित्तीय साक्षरता से अपना जीवन खुशहाल बनाएं और सशक्त बने और निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए समाज के लिए प्रेरणा बने। जो पैसों का मोल समझे वही सुरक्षित अपना कल करे, वित्तीय ज्ञान की शक्ति से हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बहनों, आज हम आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हों मगर बहुत कुछ पाने की चाह में हम मानो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहती हैं तो हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर तो देखना। और बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़,

0: ये ट्रैफिक
1: आकाशवाणी है ना,
2: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैरकर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए, पहले सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

सोनाली जलोटा के गाए इस गीत के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च

न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मानसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मानसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयर हाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ,

0: CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में एक

0: 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे।

0: होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, हम समय
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से। आवाज़ आशा भोसले की है, गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। और पसंद है आप सभी श्रोताओं की छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा रामनगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थकेयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित

चौथवें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो, संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता।

और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में ये योग गीत।
1: स्वस्थ अब बनाओ करो योग करो ए भैया योग करो तन मन खा स्वस्थ अब बनाओ मम्मा योग करो करो।

अशोक चौरसिया के स्वर में अभी आपने सुना योग गीत। लोक संगीत में लीजिए अब सुनिए जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत।

जयंत विश्वकर्मा के गाए इस प्राणायाम गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

सोनाली जलोटा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये है फिल्म दिल है के मानता नहीं का गीत। बोल फैज अनवर के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

आशिकी। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म दीवाना का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

मैंने प्यार किया। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है असद भोपाली ने और संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची। वे यहां राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए

निरंतर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। गुजरात में पिछले साल हुई एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 के दुखद दुर्घटना की पहली बरसी के अवसर पर आज अहमदाबाद में प्रार्थना सभाएं और स्मृति सभाएं आयोजित की गईं। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल जमीर काजमी के हैं और संगीत है अनु मलिक का।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं फिल्म दिल का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म सड़क का गीत। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का और आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की।

साहिबान। इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में। शिवहरी का संगीत है और गीत है आनंद बख्शी का।

साहिबान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और लीजिए फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए जिसे हमने लिया है फिल्म साजन से। बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का और आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब

0: भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायणी
0: बोलो,
1: तू ठीक कहती है नारायणी, मैं अभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना पूछेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायणी, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मरकर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी। अरे मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भार से।
0: नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती। पति अपंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी
0: ये क्या, मुन्ना रोने लगा, इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं, मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा। तू जा।
0: कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने आजा, बेटा मेरी गोद में आजा, आजा। मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, चुप हो जा। अरे ये तो और जोर से

0: ले लेगा।
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ, पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ, पानी पिलाती हूँ। ले ले बेटा, पानी पी ले। अरे अरे, क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं?
2: अरे शिभू, घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिबू, जो कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
0: यशवंत बाबू, आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ, बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
0: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
0: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
0: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
0: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख, इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
1: अच्छा नारायण, ठीक है।
0: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
4: अरे सुनो भाइयों,
5: सुनो क्या कह रहे
4: हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
5: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका, और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
4: कैसा है डिब्बा? यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
5: किस लिए काका?
4: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ, सभी लोग इस डिब्बे में पैसे डालो।
6: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
7: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
4: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे, हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसान और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
6: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं से फिरा। अरे चलो चलो भाइयों, अरे चलो अपने काम पर चलो।
4: अरे बात तो सुनो, अरे ऐसा नहीं है, सुनो
5: मैं
4: चले गए, सब चले गए।
8: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
4: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
8: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
4: सच?
8: हाँ काका, काका मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
4: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद।
1: काम बंद।
0: सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दें। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
0: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
4: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई।
3: हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
5: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
6: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
5: अच्छा,
6: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
4: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? है? लिख सकता है क्या?
6: हाँ।
4: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
3: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा है।
4: लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
3: सही कहते हो भैया।
6: बापू।
3: हाँ क्या है?
6: मैं खेलने जाऊं?
3: हाँ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
6: ठीक है बापू।
3: हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ घर घराहट है, ना कुछ।
4: हाँ लीचू, ऐसा लगता है जैसे साई भी चैन की सांस ले रही है।
3: हाँ।
4: शांत और निर्मल साई, किसी सपने जैसी।
3: सही कहते हो शिवू।
4: ले, भंग हो गई ना साई की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
3: अरे क्या हुआ? ये तो अपना यशवंत है, इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है।
4: खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से आए इसके पास? अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है, उसी से खरीदे होंगे और क्या।
3: अच्छा अच्छा। सही कहते हो भैया।
4: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
3: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल चल
4: चल।

0: मेरे मजदूर भाइयों, हमारी हड़ताल को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की।
1: हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: शांत भाइयों शांत, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आज हमारा जुलूस कंपनी के दफ्तर तक जाएगा ताकि हम अपनी आवाज इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचा सके। पता चला है कि बलबीर स्वामी के साथ लोकल लीडर जी भी वहीं पहुंच रहे हैं।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
0: नहीं भाइयों,

0: मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है, बोलो मजदूरों की जय हो, मजदूरों की एकता की जय हो,
1: मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद।
0: भाइयों, अब हमारा जुलूस और आगे बढ़ेगा और कंपनी के दफ्तर की ओर जाएगा। आप लोग मेरे पीछे जोर शोर से नारे लगाएंगे, बोलो लड़ेंगे,
1: जीतेंगे,
2: जीतेंगे,
1: लड़ेंगे,
2: जीतेंगे,
1: जीतेंगे।
0: अभी तो ये अंगड़ाई है,
1: आगे बड़ी लड़ाई है,
0: जो हमसे टकराएगा
1: चूर चूर हो जाएगा।
0: कंपनी होश में आओ,
1: होश में आओ, होश में आओ,
3: होश में आओ,
1: होश में आओ।
4: शाबाश यशवंत, शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
5: अरे
4: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है, उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
5: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ, मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब सब खुशहाल होंगे।
4: तू चिंता मत कर यशवंत, बस बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम थूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
5: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
4: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस बस तुम मजदूरों को संभालो।
5: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
4: हाँ यशवंत, एक बात और।
5: क्या?
4: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
5: हाँ?
4: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
5: लेकिन बलबीर, पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था। 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
4: देखो शास्त्री जी, मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
5: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा। तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
4: देखो मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
5: हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
4: देखो तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
5: हाँ, समझ गया बलबीर।
6: संभल के, आराम से।
7: नारायणी, ये तो मुझे कहाँ ले आई?
6: नहा लो ना।
7: नहा लो? पर क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है, ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
6: मत करो, जल्दी से नहा लो। जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ,
7: अरे कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायणी। देख नारायणी, मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायणी, मैं नहीं, मैं नहीं
6: नहाऊंगा। नहाने से डरते हो?
7: नहीं,
6: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
7: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शुरू बेटा, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा। अरे ओ, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे अरे बहुत ठंडा पानी, बचा अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है।

0: शिव को बचाता हूँ। आजा आजा।
1: अरे ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है। नारायणी, बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: यशवंत बाबू, एक महीने से ये नहाए नहीं थे। मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी। नहलाती नहीं तो और क्या करती?
3: अरे भैया बामू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
4: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
3: अरे भैया बामू, गरीब ना होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम ना लगती।
4: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
3: अरे और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
1: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
3: सकले भैया बाबू,
1: बेवकूफ कहीं के। नारायणी, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
2: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू हाँ? मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नारायणी नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती। मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार

0: अरे शिवू भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीभ शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया, अरे भैया हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए हैं।
0: शिवू भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे।
1: हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: लो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिवू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
1: अरे ना, ना रे लीजु ना, मत बोल ऐसा, अरे मत बोल। भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीजु, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
0: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।

0: बिरजू हाँ, मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने? अरे साहब, लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
1: अरे क्या, अरे शिबू,
0: अरे सच कहता हूँ मैं।
2: नारायण,
0: अरे तू भाग कर क्यों आ रही है? अरे बोल ना, क्या बात है?
3: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। ये लो 5 रुपए, लीचू के सजा कर दूध ले आओ। मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
0: अरे पर सुन तो सही, तू जा कर आ रही है?
3: देखो, बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है। मुझे साहब के घर वापस जाना है। 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे हैं, उन्होंने ये रुपए दिए हैं। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए। मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
0: हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा।
1: शिवू, शिवू, चल उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
0: खलासी लंगर? अरे वाह वाह,
1: अरे क्या मजे की बात कही है तूने।
0: अरे बात सुन, देख, 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा, बाकी बचे 4 रुपए।
1: अरे 4 रुपए में तो शिवु हम दोनों छक जाएंगे।
0: हाँ वाह वाह। अरे अच्छा एक बात तो बता लीजिए, क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
1: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है? उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
0: ठीक कहता है तो। अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी सड़ाते हैं?
1: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक। शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है। साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए सड़ाते हैं।
0: अच्छा।
1: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं। अरे वाह लीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
2: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
0: अरे, हाँ।
2: अरे सब खेल बिगड़ जाएगा।
0: हाँ।
1: हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
0: ये अरे मेरा हाथ तो पकड़, चल चल चल।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उपप्रमुख जेसन मेक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बालश्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल हम 12 जून को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने सन 1999 में वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाया था। आखिर बाल श्रम का अर्थ क्या है, जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात के अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास को बाधित करते हैं, तो वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान, लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी यानी NGO और नागरिक समाज का सहयोग भी जरूरी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। साथियों, कार्यक्रम

0: को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर, जिसमें वार्ता का विषय है पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार हैं अरविंद प्रजापति। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। आकाश की तरंगों पर आप सुन रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। आज की हमारी वार्ता का विषय है पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। बदलते समय में पत्रकारिता केवल समाचार पढ़ने या अखबार छापने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज की चेतना, लोकतंत्र की आवाज़ और डिजिटल युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आइए इसी रोचक संसार की यात्रा पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ संवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले संदेश कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियां आईं, उसके बाद रेडियो, अखबार, टेलीविज़न और अब डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में समेट दिया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कही जाती है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जनता को जागरूक करने, शासन और समाज के बीच सेतु बनाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। इसमें रोजगार के असीम अवसर मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति में लेखन क्षमता, बोलने का आत्मविश्वास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता है, तो पत्रकारिता उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोल सकती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों, विचारों, सूचनाओं और घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, जैसे शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, समाज में जागरूकता फैलाना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। जैसे भवन की मजबूती स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता का इतिहास। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट माना जाता है, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज पत्रकारिता प्रिंट से निकलकर डिजिटल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं प्रिंट पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, मैगजीन शामिल हैं। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना रूप है। उदाहरण, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाएं, रोजगार के अवसर, रिपोर्टर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। रेडियो की आवाज़ कल्पना के पंख देती है, जबकि टीवी दृश्य और दोनों संगम प्रस्तुत करता है। रोजगार के अवसर, न्यूज़ एंकर, रेडियो जॉकी, टीवी रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन। डिजिटल पत्रकारिता, आज मोबाइल ही मिनी न्यूज़ रूम बन चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पत्रकारिता का हिस्सा है। रोजगार के अवसर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल एडिटर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। फोटो पत्रकार समाज की घटनाओं को कैमरे में कैद करता है। रोजगार, फोटो जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, न्यूज़ फोटोग्राफर। खेल पत्रकारिता, खेल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक क्षेत्र है। कार, मैच रिपोर्टिंग, खिलाड़ी इंटरव्यू, खेल विश्लेषण। फिल्म और मनोरंजन पत्रकारिता, फिल्मी संगीत, टीवी सेलिब्रिटी जगत से जुड़ी खबरों का प्रसारण। रोजगार, फिल्म समीक्षक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, एंकर। खोजी पत्रकारिता, यह पत्रकारिता का साहसी रूप है। इसमें छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है। कृषि पत्रकारिता, भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी

पहुंचाना कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता में आवश्यक गुण हैं। पत्रकारिता केवल डिग्री से नहीं व्यक्तित्व से भी चलती है। यह अच्छे पत्रकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि जिज्ञासा, निष्पक्षता, साहस, लेखन कौशल, भाषा पर पकड़, समय प्रबंधन, तकनीक ज्ञान, संचार कौशल। पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार पत्र संस्थान देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार उद्घोषक, रेडियो प्रसोता,

0: पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार पत्र संस्थान देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल, टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण, आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार उद्घोषक, रेडियो प्रसोता, स्क्रिप्ट राइटर, कार्यक्रम अधिकारी। डिजिटल मीडिया कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। ब्लॉग लेखन, वीडियो कंटेंट निर्माण, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी और मीडिया अधिकारी की नियुक्ति होती है। प्रमुख संस्थाएं, प्रेस सूचना ब्यूरो, जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी। स्वतंत्र पत्रकारिता, आज फ्रीलांस पत्रकारिता भी लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। पत्रकारिता में आय अनुभव, संस्था, कौशल पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर इनकम 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह है। मध्यम स्तर 40,000 से 80,000 रुपये प्रति माह है। वरिष्ठ स्तर पर लाखों रुपये प्रति माह तक लोग अर्निंग करते हैं। लोकप्रिय एंकर और डिजिटल क्रिएटर इसमें भी अधिक कमाई करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। अब बात करते हैं उन कोर्स की जो इस क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, अवधि 3 महीने से 1 वर्ष, विषय बेसिक पत्रकारिता, रेडियो प्रस्तुति, न्यूज राइटिंग। यह शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अवधि 1 वर्ष, प्रमुख कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, स्नातक पाठ्यक्रम BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अवधि 3 वर्ष की रहती है इसकी। विषय रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया कानून, विज्ञापन, जनसंपर्क। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA इन मास कम्युनिकेशन, अवधि 2 वर्ष की रहती है। इसमें पत्रकारिता के उन्नत पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। PhD, जो विद्यार्थी शोध और अध्यापन में रुचि रखते हैं वे PhD भी कर सकते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थान हैं। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। यह वह दीपक है जो अंधकार से सत्य की रोशनी फैलाता है। आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता रोजगार, सम्मान, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट क्षेत्र बन चुकी है। आवश्यकता है मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार श्रोताओं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति।
2: साथियों, जैसा हमें विदित है कि आजकल के बच्चे मोबाइल की लत के कारण बहुत सी समस्याओं में फंस रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी दूसरी चर्चा है मोबाइल की लत विषय पर। मोबाइल की लत के कारण लोग अपना कीमती समय सोशल मीडिया, गेम और रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में कमजोरी, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। फोन से अधिक चिपके रहने के कारण अनिद्रा यानी नींद ना आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां पनपने लगी हैं। जैसे देखा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वे किसी भी कार्य में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके आदि लोग वास्तविक दुनिया और परिवार से दूर होकर आभासी यानी डिजिटल दुनिया में सिमट जाते हैं। लोग बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर में बैठकर फोन चलाना पसंद करते हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ता है, यानी हम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हैं। जब फोन पास न हो या इंटरनेट बंद हो तो व्यक्ति गुस्से या बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। काम या पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मोबाइल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने देना और सीमित उपयोग करना ही समझदारी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे मोबाइल की लत विषय पर।
1: साथियों, अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं।

0: साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना, ये था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसमें गायक थे कमाल खान, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और लेकर चलते हैं आपको इस चर्चा की ओर, जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में AI के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक तेज हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज लर्निंग और त्वरित सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में AI की मदद से बीमारियों की सटीक पहचान, रोबोटिक सर्जरी और नई दवाओं का अनुसंधान बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सिरी और स्मार्ट होम उपकरणों ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में AI धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथियों, AI ने तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। AI के बढ़ते प्रभाव के साथ ही डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। साथियों, यह तकनीक मानव जीवन को असीमित संभावनाओं की ओर ले जा रही है, लेकिन इसका संतुलित और नैतिक उपयोग ही भविष्य की सफलता है। साथियों, ये थी हमारी छोटी सी चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के विषय पर।
1: साथियों, लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

साथियों, भी आपने सुना बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें गायक थे अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल। इसमें गीतकार थे अखिल सचदेवा और संगीत से भी सवारा था अखिल सचदेवा ने। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। यूपी ट्रिपल SC योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें पद का नाम है UP SSSC आबकारी कांस्टेबल, जिसमें पदों की संख्या है 722। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता है UP SSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.uptsssc.gov.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत कलंक फिल्म से लिया है, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

अगला गीत लिखा जावेद अख्तर ने, शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई है। फरहान अख्तर का गाया हुआ ये गीत हमने लिया रॉक ऑन फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है कुमार ने। बादशाह फजील पुरिया और शुक्रिति का की आवाज़ें हैं। कपूर एंड सन्स फिल्म से इस गीत को लिया है संगीत अमाल मलिक का।

तनु बेट्स मनु फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। राजशेखर ने इस गीत को लिखा है, धुन तैयार की कृष्णा ने।

तनु वेड्स मनु, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शफाकत अमानत अली को। राज शेखर ने इस गीत को लिखा था, संगीत तैयार किया था कृष्णा ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नौ प्रवर्तकों, व्यवसाय जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए रणनीतिक परामर्श सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बालश्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर

0: 1800-4450-559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है।

जीडी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
5: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैरकर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
6: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दाग फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई एस डी बर्मन ने, लता मंगेशकर की आवाज़ है और इस गीत को हमने लिया अभिमान फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अगला गाना लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम सूरज।

शारदा फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, धुन तैयार की सी रामचंद्र ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 7 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा

0: अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डाल दें एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। साथ ही साथ सुनेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर स्थल रिकॉर्डिंग आधारित विशेष कार्यक्रम। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास, ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और नगमे हम आपको सुनवाएंगे 9:45 पर।

और रात 10 बजे कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 9:30 बजे खेल जगत में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजबी की बातचीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 बजे आप सुन सकते हैं रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नज़र कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम कल सुबह 7:21 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा, जिसमें समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 बजे। आभा खरे के गाय बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर कार्यक्रम लोक संगीत में। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे सुनिएगा पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत। 10:00 बजे आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर, इसका समय 10:05। सुबह 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग माला में सुनिएगा राजा काले का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीत। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अब डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11:00 बजे। 12:00 बजे आपकी फरमाइश। संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 12:30 बजे सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 8। 1:00 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:30 बजे सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं 2:02 बजे, शाम 5:33 और शाम 6:00 बजे। कुछ और फिल्मी नगमे सुनवाएंगे 2:02 पर, कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसे आप सुन सकते हैं कल रात 8:00 बजे। कल का विषय है अष्ट लक्ष्मी। 8:35 पर फिल्म संगीत। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 बजे सुनिएगा यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम

0: पिटीशन की याचिका को किया खारिज और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर

बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से श्योपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ग्राम सभा में बिराजे भाई सभी किसान भैया हरों को और महनो हरों को आनंद कृष्ण भैया की दो यहाँ जोरख हैं राम राम। भैया बहनों का हाल चाल है आप औरों के? हम तो यही उम्मीद कराते हैं कि सभी जने उमदा हुए हैं। और अब देखो गर्मी को मौसम तो बिल्कुल कहना चाहिए कि पूरे जोर पे तो है ही, मनो धीरे धीरे जोशी लगन लगो है कि बहुत जल्दी बस का रसोई आए वारो है, मानसून आए वारो है। तो जा धरती की जो तपन है वह दूर हो गए, तो जा धरती की तपन दूर हुए तो हुए ही, मनो अबे अपन और हैं अपनी पसंद की फिल्मी गाना सुन के अपने मन की जो दिन भर की जो थकावट है, जो मन की जो तपन है, बायस भी दूर कर लिए थे। और सबसे पहले अपन और सुना थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को गाओ भाव फिल्म गंगा मैया।

ये तो है पीरी चढ़ाई बो में। जो गाना सुनबे के लाने चिट्ठी लिखे वारे अपने नियमित श्रोता हैं मेन चौराहा कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। तो सुनाते हैं जो गीत।

0: भैया बहन रहो, अब समय हो रहा है बुंदेली समाचारों को, तो सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार और बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं आनंद कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताई कि पिछले 12 साल में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ावे के लाने काम करो है और जो अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई दिए थे। बिन्न कही कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद दे रही है, जहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स सम्मेलन को संयुक्त रूप से उद्घाटन कर रहे हैं, जाको उद्देश्य भारत की कछु बेहतरीन डीप टेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करवा है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। मैंने बताई कि 1200 से ज़्यादा स्टार्टअप में से

0: 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप को चयन करोगा है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन को ब्रिक्स कृषि मंत्रियों को सम्मेलन शुरू होगा है। ये अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि जो संवाद विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सामने मौजूदा चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और बाजार की अनिश्चितता को सामूहिक समाधान खोज के लाने महत्वपूर्ण मंच है। मैंने जोर दिया के कही कि यदि छोटे किसान मजबूत होते हैं तो दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 साल पूरे हुए के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों को आयोजन करो जा रहा है। बीते वर्ष में देश ने विकास, सुशासन, गरीबी कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचावे और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं को लाभ दिलावे के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों को आयोजन करो जा रहा है। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है, जो दिवस हर बच्चा के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाते हैं। भारत में 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम कर वो कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों को मानव है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से बाल श्रम उन्मूलन को सबसे कारगर रास्ता हो सका थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दी है। जय याचिका बिन्ने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द करवे के खिलाफ दायर करी हती। न्यायालय ने स्पष्ट करो कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द करे जावे के फैसले में हस्तक्षेप न करे। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपावे के आरोप में मीनाक्षी नटराजन को नामांकन निरस्त करो थो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करी। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को ख़त्म हुए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम के 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कही कि NTA जो सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकता के अनुरूप आयोजित करी जाए। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा को आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 साल के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रदेश में दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मानसून दस्तक दे सका थे। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मानसून पूरे राज्य को कवर कर ले है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। और यही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त हुए।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बनेरो अपन और बात कर रहे थे और बात करवे के संगे संगे अपन और जैसी बात कर रहे थे कि आज अपन और अपनी पसंद के गाना सुन रहे हैं। मानो गाना सुनने के साथ साथ में कुछ जरूरी बातों पर भी बात करें। आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और हर साल 12 जून को जो मनाया जाता है जाको जसाल जा हर साल जाकर लाने एक संदेश बनाया जाते हैं, एक थीम बनाई जाते हैं और जसाल जा की थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लाने उचित खेल और वयस्कों के लाने सभ्य काम। ये 3 चीज़ें जा बार की थीम है और जाको मतलब जो है कि बच्चों है खेल कूद के उन्हें अपना शरीर अच्छा बनावे की और लिखाई पढ़ाई करके अपनो भविष्य बनावे की बारे में ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा वाक लाने प्रयास करे जाना चाहिए। बच्चों को श्रमिक के रूप में उनसे काम नहीं लौ जाना चाहिए। दुनिया भर में बहुत सारे बच्चा बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चा तो बड़े खतरनाक टाइप के कामों में लगे हुए हैं। तो भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में भी और भारत सरकार की तरफ से भी कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों को आयोजन करो जा रहा है ताकि बच्चों को कार्यस्थल से निकाल के स्कूलों तक पहुँचाया जा सके। और भैया जा आप और उनसे बात कर दो

ठीक आ गई। हमारे हाथ में नियमित श्रोता हैं अपनी रेडियो शारदा रेडियो श्रोता संघ चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल अनिता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, सुमेश मनीषा और शुभम की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन और सुनाते हैं आशा भोंसले को गाओ भाव फिल्म गोदान को जो गीत।

0: तो भैया बहनों अपन उन्होंने जो अच्छो अंदाज गाना तो सुन लो, मनो हमने आप को जैसे बताई कि आज है बाल श्रम निषेध दिवस, तो आज जहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम की अब हम प्रस्तुति दे रहे हैं, जहाँ कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सहयोग है तो पूनम सरावगी को और प्रस्तुति है चंद्रशेखर शर्मा की, सुनाते हैं।
1: जब कभी भी हम अपने आसपास किसी छोटे बच्चे को किसी ढाबे, किसी होटल या आसपास की जगहों पर सब्जी बेचते हुए या घरों में काम करते हुए देखते हैं तो अनायास ही हमारा मन कचोटने लगता है। क्या यही हमने अपने नौनिहालों के लिए तय किया था? क्या इन बच्चों से अपने हिस्से का बचपन जीने का हक भी छीन लिया गया है? क्या ये बच्चे बचपन से ही जिम्मेदारियों और रोजी रोटी के बोझ तले दबकर रह जाएंगे? इसी को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर

0: साल अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन नौनिहालों के लिए किए जाने वाले कामों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इसी संबंध में हमने बातचीत की है एक्सपर्ट्स के साथ, आपको सुनवा रहे हैं इसी बातचीत के कुछ संपादित अंश।
1: असिस्टेंट लेबर कमिश्नर
0: बीपी सिंह ने हमसे अपने विचार साझा किए।
2: बाल श्रम के विरोध में जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, हमारा कार्यालय और बाल श्रम से संबंधित जो भी विभाग हैं, सब मिलकर इसको प्रयास करते हैं कि बाल श्रम के संबंध में जागरूकता का प्रचार प्रसार हो और इसके अच्छे परिणाम भी आए। भोपाल में तो काफी गतिविधियां होती रहती हैं और इसके अलावा नियमित रूप से भी हम जिला स्तरीय सतर्कता समिति है, एक टास्क फोर्स है, उनके माध्यम से भी इस पर चर्चा होती रहती है और जहाँ भी ऐसी समस्याएं होती है तो उस पर काम किया जाता है और उसको प्रयास किए जाते हैं कि संबंधित अधिनियम है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम है। तो इसमें अभी 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर वो माँ बाप के साथ कार्य करते हैं उसकी अनुमति दी गई है, परंतु ये आवश्यक है कि वो स्कूल के समय में काम नहीं कर सकते हैं और 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जो हमें देखते हैं तो उसकी अनुमति भी है। देखिए, जहाँ भी बच्चा काम करता है तो उसको चाइल्ड लाइन या अन्य माध्यमों से उसके 1098 पे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ सूचना आती है, उस सूचना पर तुरंत कार्रवाई होती है। बहुत कमी आई है, जैसे जैसे प्रचार प्रसार हुआ है और जो विभागीय प्रयास हुए हैं उसके कारण बहुत कमी आई है। तो बाल श्रम और ड्रॉप आउट का एक सीधा संबंध है। ये प्रज्यूम किया जाता है कि स्कूल के टाइम में अगर बच्चा नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। एक सामाजिक और इसके सामाजिक भी कारण है और आर्थिक और शैक्षणिक कारण भी है। तो इन सब के कारण बाल श्रम एक जटिल समस्या है, सामाजिक समस्या है। तो सभी वर्गों को मिलकर इसमें प्रयास करना होता है। इसीलिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसमें कई विभाग हैं, कई संस्थाएं सब मिलकर इसमें काम करते हैं। अभी आज ही हमारी विभिन्न संगठनों के साथ संबंध में बैठक है और पूर्व में भी बहुत अच्छे से कार्यक्रम होते थे और इस बार भी हम लोग अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। मिनी स्तर पर ही कार्रवाई होगी। देखिए, बाल श्रम ऐसी समस्या है, इसके बारे में प्रचार प्रसार कहीं ज्यादा आवश्यक है। जो कानूनी कार्रवाई होती है वो तो होती है, परंतु प्रचार प्रसार का ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है।
0: बच्चों को रेस्क्यू करने से लेकर उन्हें बाल सुधार गृह तक पहुंचाने से जुड़े अपने अनुभव साझा किए सोशल वर्कर कुमुद सिंह ने।
3: 12 जून को विश्व बाल निषेध दिवस है। दरअसल ये दिवस भी हमें शर्मिंदा करता है कि ये दिवस हमें मनाना क्यों पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इस पर बात करें तो हमारे लिए और भी चिंताजनक स्थिति है कि सरकारी तमाम योजनाओं के बावजूद, अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूँ तो हम 5 टॉप के राज्यों में हैं जहाँ बाल श्रम हो रहा है। ये तो एक चिंता की बात हो गई, लेकिन हम ये एक बात और देखें कि ये वो आंकड़े हैं, ये उन आंकड़ों के आधार पर तय हुआ है जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारा बाल श्रम रिपोर्ट ही नहीं होता है, और चूंकि हम सामाजिक स्तर पर, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिनको गिना ही नहीं जाता श्रम में। स्कूलों में एडमिशन है लेकिन काम पर लगे हुए हैं बच्चे, और इस तरीके की जो स्थितियां हैं ये कई बार बहुत डराती हैं। ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल अब तक तो खत्म हो जाने चाहिए थे, और ये केवल बाल श्रम वाली बात नहीं है, ये केवल एक चाइल्ड लेबर की बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि इसको हम यूं भी देखें कि ये एक जन्मे हुए बच्चे का सारा जो अधिकार है, हम जो बाल अधिकारों की बात करते हैं, मतलब केवल श्रम की बात नहीं है, उसकी शिक्षा छिन रही है, उसके सारे अधिकार जो उसको मिलना चाहिए वो उसके पास से दूर हो रहे हैं। तो अगर यूं देखें तो ये सीधे सीधे हम सब जिम्मेदार हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सबको ये सोचना होगा कि हम सब एक अपराध कर रहे हैं ये अगर बच्चों को हम बचपन से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक कैसे बनाएंगे अगर हम उनको उनके अधिकार ही नहीं मिलने दे रहे हैं। सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, तमाम सारे हमारे पास इस तरह के लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। तो इसमें एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें सरकार, समाज और परिवारों की भूमिका, सबको मिल करके, मतलब किसी समस्या को समस्या की तरह देखना और उसको समाधान के रूप में अगर हम देखना चाहें तो हम सबको एक साथ खड़े होना होगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है इसलिए पेरेंट्स उनको काम पर लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई का महत्व ही नहीं मालूम उनको
4: जी।
3: कई बार ठीक है घर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई उनके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आजादी के इतने सालों बाद भी हम ये नहीं समझा पाए हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है तो ये भी हमारा एक फेलियर है। तो बाल श्रम को केवल उस तौर पर ना देख करके हमको इस रूप में भी देखना होगा कि हमारा फेलियर कहाँ कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, जब मैं जमीन पर काम करती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे किसी ना किसी असंगठित काम में, जैसे स्कूल में एडमिशन है लेकिन मम्मी के साथ काम पर जा रहे हैं
4: जी,
3: या पापा की कोई सब्जी की दुकान है वो ठेले पर खड़े हुए हैं, और ये हम ये

0: चीज़ें बाल श्रम में जुड़ी ही नहीं है, वो तो यूं ही खड़े हैं
1: जी,
0: ऐसे ही आ गए हैं। आप किसी भी भरे बाजार में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको छोटी छोटी चीजें बेचते मिल जाते हैं और वो इतने मैच्योर कर दिए जाते हैं कि वो आपसे साफ झूठ बोल जाते हैं और बार सही भी बोल रहे हैं। स्कूल में एडमिशन तो है उनका, लेकिन उसकी स्थिति हम इस रूप में भी देखते हैं कि आप अगर 8वीं 9वीं तक के बच्चों को देख लीजिए और 2 लाइन लिखवा लीजिए तो उनको शिक्षा, तो कहाँ जा रहे हैं। ये वाली चीज को सरकार को गंभीरता से और गंभीरता से लेना होगा और जो योजनाएं परिवारों को, जो योजनाएं उन वंचित समुदाय के परिवारों को सक्षम बनाने में हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को अगर देखा जाए, बनाया जाए और उसमें थोड़ा सख्ती से पालन कराया जाए। मैं इसमें एक उदाहरण इस रूप में देना चाहूंगी कि अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन है और नहीं आ रहा है तो ये स्कूलों की जवाबदारी होनी चाहिए कि वो बच्चा इतने दिन स्कूल, क्योंकि मैं खुद कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो एग्जाम देने चले जाते हैं और एग्जाम में पास हो जाते हैं। वो कैसे पास हो जाते हैं ये नहीं मालूम होता, लेकिन वो काम पर जा रहे हैं
1: जी।
0: तो ये स्कूलों की जवाबदारी भी होना चाहिए और केवल स्कूलों की नहीं, हम समाज के दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी, हम समाज की भी जिम्मेदारी, इसमें हम भी अपने आप को जोड़े। और वो परिवार जो उन बच्चों को काम पर रख रहे हैं, वो फैक्ट है कि हम जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बहुत नैतिकता में आकर बच्चों को काम पर ना लगाए, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसका क्या अगर कहीं कोई पकड़ा जा रहा है बच्चा, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने से बेहतर है कि सरकार सबको साथ लेकर चले और उस बच्चे को वहां तक पहुंचने ही ना दे। तो क्या हम सब मिलकर के, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो बाल श्रम निषेध दिवस है ये बहुत जल्दी खत्म हो और ये बाल उत्सव दिवस और किसी और बेहतरीन नाम से जाना जाए। हम सब की जिम्मेदारी, हम सब इसे निभाएं।
2: भले ही ये अनुभव कटु है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख तो हमें अवश्य देकर जाते हैं और हम अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए इन बातों, इन अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। हमसे अपने विचार साझा किए समाज सेविका मीता बाधवा ने।
3: बाल श्रम से जब हम बच्चों को बचाने की बात करते हैं ना, उसके पीछे की स्टोरी का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर मजदूरी कर रहा है, कौन सा बच्चा होता है जिसको सुबह सुबह उठ के काम पे जाना और कमाना और खाना अच्छा लगता है और परिवार को खिलाना। तो एनजीओ का जो इसमें सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, समझे कि उनके परिवार की क्या हालत है और उन बच्चों को काम से निकाल के जो सरकारी फ्री स्कूल्स हैं उसमें करके इनके घर में ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे वो कुछ ऐसा स्किलिंग करके उनको कमाई का जरिया दे सके। इतने स्किलिंग के, इतने स्किल डेवलपमेंट के हमारे प्रोग्राम हैं। मैं क्या कर सकती हूँ एज अ सोशल वर्कर, मैं चाहती हूँ कि जैसे एक नंबर हुआ करता था चाइल्ड हेल्पलाइन का और वो प्राइवेटाइज था, मतलब PPP मॉडल पे काम करता था, बहुत बेहतरीन काम करता था। तो कोई भी बच्चा किसी भी परेशानी में हो तो वो नंबर उसके पास रहे, वो बताए और वो सरकार अपना डेटाबेस उस तरीके से क्रिएट कर सकता है। देखिए, सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं घर घर जाके चीजों को देखना, पर नजरअंदाज भी नहीं कर सकती है सरकार। हम लोग ढाबों में जाते थे खाना खाने, तो वहाँ पे अक्सर गांव के बच्चे जो मजबूरी में अपने लिविंग के लिए रोटी कमाते थे, तो उसमें से कई लोग पूछते थे कि बेटा तुम इतने छोटे हो, क्यों कर रहे हो। तो वो जो ओनर होता था ढाबे का, वो यही बोलता था कि भाई साहब इसकी ना आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है, तो मैंने सोचा मैं अपने पास, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो उसको हेल्प कर रहा है कि वो गलत संगत में ना पड़े, उसको वो वहाँ काम कर रहा है और उसको पैसे मिल रहे हैं और वो घर चला रहा है। तो इसमें देखिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग सिटीजन्स यदि चीजों के बारे में जागरूक हुए और एक ऐसा कोई हेल्पलाइन हो जहाँ पे वो कॉल करके बता सके पुलिस हेल्पलाइन के अलावा, तो बहुत अच्छी बात। तो हमारे सामने जहाँ परेशानी होती है वहाँ हमारी जरूरत होती है। तो मेरी तरफ से मैं जब भी कोशिश करती हूँ तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम घर पे जाके मम्मी पापा को समझाइश दें और बताएं कि अगर आप लोग लेबर का काम कर रहे हैं तो सरकारी स्कूल में बच्चों को डालिए और शुरू से डालिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चा हमारे साथ लेबरगिरी करेगा तो ये और 4 पैसे घर में आएंगे, अभी 4 ही आएंगे, वो 4 को 8, 8 को 12 बनाने का सोचिए।
2: महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुचित्रा राजावत ने हमें बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को किस तरह से मानसिक रूप से तैयार कर मुख्य धारा में लाने में सहयोग करती हैं।
4: ये हमारे लिए एक चुनौती भरा काम रहता है। वो जब बच्चे को हम रेस्क्यू करके लाते हैं तो सबसे पहले उसको हम बाल कल्याण समिति रहती है उसके समक्ष हमें प्रस्तुत करना रहता है। तो वहाँ पे बाल कल्याण समिति बच्चे की इसी मानसिकता पे ही काम करती है मुख्य रूप से। वह जानती है कि बच्चे को किस कारण से बाल श्रम में धकेला गया है, क्या बच्चा आर्थिक कारणों से बाल श्रम कर रहा है या उसकी मनोवृत्ति वो हो चुकी है। विभिन्न कारणों का पता लगा के उसके अनुसार उसे लाभ दिया जाता है या उसका रेस्क्यू करके हमारे

0: बाल संरक्षण गृह रहते हैं, वहाँ पे भी उन्हें सुधार के लिए रखा जाता है
1: जी।
0: कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो जो डरे हुए बच्चे हैं तो उनको श्रम करना उनके लिए मजबूरी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आदतन हो जाते हैं, उस चीज के आदि हो जाते हैं, वैसा करने के लिए वो स्वयं इच्छुक होते हैं, तो ये भी मानसिकता कहीं ना कहीं से उनके आसपास के वातावरण से या परिवार के माहौल से आती है। और सबसे पहले तो उनकी मानसिकता पे ही काम किया जाता है कि अगर बच्चा आदतन बाल श्रम कर रहा है या उसको डरा धमका के कार्य कराया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इसी पे काम करना होता है कि किस कारण से बच्चा इसमें आया है
1: जी।
0: मुख्य धारा में लाने के लिए उसको बच्चे को हम लोग बाल संरक्षण समिति को सौंपते हैं। वहाँ पे पहले उसका पता किया जाता है कि बच्चा क्यों बाल श्रम कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उसे संरक्षण गृह में आश्रय प्रदान करते हैं, या जिस भी प्रकार की सुविधा बच्चों से जो भी हम लाभ दे सकते हैं उन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई बालिका है किसी चीज में फंसी हुई है तो उसके लिए भी कुछ योजनाएं चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने माता पिता के पास नहीं रह सकता या फिर माता पिता उसे परेशान करते हैं किस कारण से, तो उसके लिए फोस्टर केयर योजना भी है जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है, या फिर बच्चा पढ़ाई करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है तो उसके लिए भी एक योजना हमारे यहाँ विभाग से चलती है, उसमें उसको स्कूल जाने के लिए आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है। तो हमारी योजना के अंतर्गत बच्चे को लाभ दिया जा सकता है, हम उस योजना के अंतर्गत बच्चे को लाभान्वित करते हैं। जनरली 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कोई भी बच्चा हो सकता है, वो जो 18 वर्ष से कम उम्र का है वो कोई ऐसा बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं तो वो बाल श्रम कहलाता है।
2: बात जब बाल अधिकारों से जुड़े नियमों और कानूनों की हो तो उसके लिए सही जानकारी होना भी आवश्यक है। इस संबंध में हमें जानकारी दी एडवोकेट सौरभ नामदेव ने।
3: बच्चे जो काम करते मिलते हैं वो ये देख के हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे बाल न्यायालय अधिनियम के तहत दो प्रकार के बालकों की डेफिनेशन दी है, एक तो बालक वो है जो 0 से 14 वर्ष की उम्र के होते हैं, दूसरे 14 से 18 वर्ष के एडोलसेंट एज। तो जो बालक जो काम करते हैं अपन कई बार दिखते हैं वो अपने खुद के परिवार के व्यवसाय में काम कर सकते हैं, जो खतरनाक बिजनेस नहीं है, जिसमें कांच का यूज नहीं है, केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, हर परिवार में अपने यहाँ पे काम चला रहा है कि व्यक्ति अपने बच्चों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो वो सामान है, किराने की दुकान में बच्चों को बिठा लेते हैं, कपड़ों की दुकान पे बिठा लेते हैं, तो ये बालक तो अलग हो गए। अब एक बालक वो होते हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या फिर उनको वो एक अवैध कार्य है, उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जो सजा है जो माननीय अपने न्यायालय में देते हैं, जो अपना अधिनियम में भी है कि जो 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है जो कि 6 माह से कम की नहीं होती, और जुर्माना है उसमें 20,000 जो कि 50,000 तक का होता है। तो ये उनके लिए सजा का प्रावधान है, पर बालक अपना काम कर सके, परिवार चला सके, तो उसके लिए 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बालक हैं, जो एडोलसेंट एज के हैं, उनको काम करने की कुछ व्यवसाय में अनुमति है, पर उस अनुमति के साथ ये नियम भी है कि वो एक बार में 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, उस 3 घंटे के बीच में 1 घंटे का उनको रेस्ट दिया जाएगा, और किसी भी हालत में 6 घंटे से अधिक उनसे काम नहीं कराया जाएगा। इनका पालन तो होता है, कई जगह वायलेशन हो जाते हैं क्योंकि बच्चे अपनी मजबूरी से या कुछ लोग लालचवश उसके काम को कराते हैं, जिसके लिए हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या फिर जो सामाजिक जागृत लोग हैं वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनको सजा भी होती है। जो मुझे एक चीज जो आपसे जरूर बोलना है कि जो इंदौर में एक प्रक्रिया की गई कि भीख लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया, अगर इसी प्रकार के काम यदि किए जाए तो बालकों को जीवन और आसान होगा, क्योंकि लोग बालकों का सहारा लेके ही भीख मांग रहे हैं। एक तो उनके जो है पढ़ाई के लिए जो है उनका संस्था में ऐसा होना चाहिए कि उनकी पढ़ाई कम से कम 14 वर्ष की उम्र तक उनकी पढ़ाई प्रॉपर हो पाए, एक व्यक्ति ऐसा निरीक्षक होना चाहिए जो इस चीज को फॉलो करा पाए, तो माननी ज्यादा अच्छी प्रक्रिया हो पाएगी। शासन को इस दिशा में थोड़ा सा काम और करना चाहिए। कानून कई तरीके से मदद करता है, उन्होंने पूरा सिस्टम दिया हुआ है। अब लेबर कमीशन उस सिस्टम का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं ये लेबर इंस्पेक्टर पे या उस डिपार्टमेंट के आने वाले उस कर्मचारी पे भी निर्भर करता है। बहुत अच्छी हमारी जुडिशरी में मजिस्ट्रेट को ये पावर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज को, वो उसमें समिति में तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम है सब लोग। तो वो समिति जो इनकी बनी हुई है बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसको एक अच्छे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हुए अगर कार्य करेंगे तो बहुत सफलता भी मिलेगी।
2: तो कुल मिलाकर इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है। हम उम्मीद करते हैं यदि आप भी अपने आसपास किसी बच्चे को यानी बाल श्रमिक को काम करते हुए देखेंगे तो निश्चित ही उसकी मदद जरूर करेंगे।
4: तो भैया बहनों, देखो अपन उन्होंने जा कितनी अच्छी जानकारी सुनी और कितनी अच्छी बातचीतें अपन ने सुनी और विशेषज्ञों से बात सुनी कि बाल श्रम जो है, बच्चों को काम तो पढ़वे लिखवे को है, बच्चों को काम तो स्वस्थ रहवे को है, बच्चों को काम तो शरीर बनावे को और अपने भविष्य बनावे को है। उठे बच्चों को काम जो नहीं है कि बेचारे मजूरी में लग जाएं और कमाई खान लगें। तो कहवे को मतलब जो है कि बाल श्रम है रोकवे के लाने

बहुत सारी व्यवस्थाएं करी गई, बहुत सारी बातें करी गई हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और जब अच्छे बच्चा अच्छे तरीक़े से पढ़ लिख पाएँ, अच्छे तरीक़े से स्वस्थ हो पाएँ, तभी जाके वे बड़े होकर, तब जाके वे यदि कमाई करेंगे, तब जाके वे अपने कार्य क्षेत्र में उतरें, तो उधर जा कर के वे और अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो जापान और ने एक बहुत अच्छी बात करी, और यह बात को आप और से ध्यान देते रहिए कि यदि मान लो आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चा हुए जो मजदूरी कर रहे हैं, कोई ऐसे माँ बाप हुए जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती मजदूरी करवे के लाने भेज रहे हों, पढ़वे ना भेज रहे हों, उनके खान पान पर ध्यान ना देते हों, तो उन लोगों को समझावे की ज़रूरत है कि भैया ऐसो न करो, कैसे कि ऐसो करके आप अपने बच्चों के साथ में एक तरीके से शत्रुता कर रहे हो। बच्चों को विकास नेचुरल प्राकृतिक तरीका से, नैसर्गिक तरीका से बच्चों को विकास होना चाहिए, तब जाके बच्चा आगे बढ़ सका थे। तो यह एक बहुत ज़रूरी बात थी। और भैया बहनरो, अब अपन एक गीत और सुनाते हैं। यह गीत है सुनमावे किराने लिखो है, सह्याद्री परिसर भदभदा रोड भोपाल से, योगेश्वर सिंह भारती, डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई, दुर्गाबाई और अमिता भारती ने। और जय एक चिट्ठी है अपने पास में बनियापारा छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और समस्त माखीजा परिवार की। तो इन सब की पसंद पे अब अपन और सुनाते हैं फिल्म आज़ाद में लता मंगेशकर को गाओ जो गीत।

तो भैया रो देखो अपन जो एक अच्छे उमदा से गाना सुनो। और अब जैसे अपन उन्होंने खेती किसानी में अपन और काम कर ही रहे हैं, खेती की अपनी जो उपज रहे थे वह उपज के लाने अपन और जवाब को ध्यान देना पड़ा थे कि अपन ने अपने खेतों में अच्छी उपज भी हो गई मान लो, अब वह उपज को सही तरीका से विपणन हो सके, मतलब वह उपज की सही तरीका से बिक्री हो सके और अपने अच्छे

सही तरीका से अच्छा लाभ भी मिल सके। जाके लाने अपनों ने कई बार का करा था कि अपनों ने अपनी तरफ से कोशिश करा थे, लेकिन कई बार वहाँ में अपनों को अच्छा लाभ अपने आप से नहीं मिल पाए। तो अपनों को जा समस्या को समाधान करवे के लाने सरकार की तरफ से एक बड़ी अच्छी योजना शुरू करी गई है। वह योजना कहलाते हैं कृषि उत्पाद विपणन समिति। ये समितियाँ बनाई गई हैं भारत में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित करी गई हैं और इनको मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचावे को है और उनकी खेती की जो उपज है बाखों उचित और पारदर्शी मूल्य से सुनिश्चित करवे को है। अब अपन पूछें कि जा ए जाको जाए अंग्रेजी में कहते हैं जाको शार्ट फार्म में APMC, तो जा APMC के मुख्य कार्य का है, तो जाको मुख्य कार्य तो जो ही है कि मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीदी बिक्री है जा विनियमित करते हैं जैसे धोखाधड़ी हुए, मतलब जो उत्पाद अपने खरीदने हैं बाकी गुणवत्ता के आधार पर बाको एक मूल्य निर्धारित करो जाए और वह निर्धारित मूल्य के आधार पर बाकी खरीदी फरोख्त हो। दूसरी चीज़ जो है कि किसानों की उपज की बिक्री पारदर्शी तरीका से खुली नीलामी के माध्यम से सुनिश्चित करवो। जहाँ APMC एक काम जो सही कर रहे थे कि किसानों की जो उपज है बाकी बिक्री बिल्कुल पारदर्शी तरीका से खुली नीलामी के माध्यम से, बंद कमरा में नहीं कि चोरी छुपे में कोई भाई नीलामी कितने में भी करवा दी, ऐसा काम नहीं है, खुले में सबके सामने होते जिनमें कि बिल्कुल पारदर्शी तरीका से सबको पता होता कि कौन को माल कौन कैसो माल था और कितने में बिको है। फिर जाके बाद में एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो होते कि माल तो बिक गया मगर बाको मूल्य अपने कैसे मिल पाए, बाको भुगतान कैसे हुए, तो किसानों को उनकी उपज को बई देना या एक निश्चित दिन जो तय कर दो जाते बा तारीख पे भुगतान दिलावो, जब बहुत जरूरी काम जा APMC के द्वारा करो जाते। और जा में एक जा संस्था को जा समिति को एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो सही है कि मंडी का जो प्रांगण हुए थे वहाँ में ग्रेडिंग तौल भंडारण और पीने के पानी और जो दूसरी और ज़रूरतें हैं इन सब ज़रूरतों की जो सुविधाएं हैं इन सब सुविधाओं की अपन होते पे पूर्ति करना चाहिए। तो जा APMC बहुत ज़रूरी काम कर रही है और जाके लाने जा के माध्यम से किसानों को उनकी उपज को सही तरीका से लाभ भी मिला थे। अब जो संस्था या जो समिति है या काम ऐसे करा थे कि राज्य सरकार ने जहाँ करा थे अपने भौगोलिक क्षेत्र को बाजार के क्षेत्रों में निर्धारित करा थे और प्रत्येक बाजार क्षेत्र को संचालन एक अलग APMC द्वारा करो जा थे, माने एक अलग समिति द्वारा करो जा थे। और नियम के अनुसार किसान को अपनी उपज सबसे पहले यही अधिसूचित मंडियों में लाने हुए थे जहाँ व्यापारी और एजेंट यानी जो आढ़तिए रहते हैं वे और जाकर बोली लगाते हैं। आजकल ये जो समितियां हैं इन मंडियों है डिजिटल बना दो है, डिजिटल बनावे का मतलब जो है कि आजकल ये सब कंप्यूटर और इन सब के माध्यम से इन पे काम होने लगो है, जो कहलाते हैं ई-नाम NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार कहलाते जो जब पोर्टल के माध्यम से देश भर की मंडियों को जोड़ दो है जैसे किसान ऑनलाइन माध्यम से सभी बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया बहनों देखो जाए जरूरी जानकारी है दई हमने और एक ही संग चलवे की बिरिया हो गई तो लिए थे विदा। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को आनंद कृष्ण भैया की राम राम।

आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की,

0: हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आईं, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियाँ संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
0: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ।

0: उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहाँ पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत तो उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसके लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में

रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन

0: भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं

0: क्रिप्टोग्राफर नहीं है, उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी हैं वो उसका फोटो उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने

0: एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर काकी श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुँचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी,

0: भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सकें, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जा कर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा, आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं,

0: भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी परछाइयां फिल्म से लिया है। लता मंगेशकर की आवाज है। राजू मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

0: और लता मंगेशकर के गाए आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम

0: से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशन को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Charge d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking

0: नई तवानाई पैदा हुई है, जबकि भारत पहले का नजरिया मुल्क की खारजा पॉलिसी में लगातार सबसे ऊपर रहा। भारत की आलमी मसरूफियात में इंसानी बुनियादों पर मदद और कुदरती आफात के दौरान बचाव कार्रवाइयों ने अहम रोल अदा किया। श्रीलंका के शुमाली साहिल पर समंदरी तूफान दितवा की वजह से नवंबर 2025 में सैकड़ों लोग हलाक हो गए, हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा और अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इस दौरान श्रीलंका के आवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु का आगाज किया, ताकि श्रीलंका को फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद और कुदरती आफत के दौरान राहत पहुंचाई जा सके। भारत की खारजा पॉलिसी की अहम झलक उस वक्त नजर आई जब कोविड-19 बहरान के दौरान भारत ने अपनी इंसानियत मरकूज सिफारतकारी के तौर पर वैक्सीन मैत्री पहल का आगाज किया। भारत ने जनवरी 2021 से 99 मुल्कों और अक्वामे मुत्तहदा के दो इदारों को 30 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ऑपरेशन सागर बंधु और वैक्सीन मैत्री जैसी मुतासिर कुन पहल के इम्तजाज की बदौलत भारत गुज़िश्ता 12 साल में आलमी कायद बनकर उभरा है। इंसानी बुनियाद पर मदद और इलाकाई साझेदारी के तई अहदबस्तगी की जड़ें भारत की वसुधैव कुटुंबकम जैसी सकाफती इकदार में पैवस्त हैं। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: पीवी सिंधु सिडनी में जारी ऑस्ट्रियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दर्जे की भारतीय खिलाड़ी ने चीनी ताइपी की चिन सू यू को एक तरफा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तई मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभिंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाढ़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमेरिका के शॉज़ डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओ, एक ऐसा खेल जो पूरे विश्व में काफी लोकप्रिय है, इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। इस खेल में फिजिकली और मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप। आपने खेल जगत में अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के बल पर एक अलग पहचान बनाई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर आपका।
0: नेहा जी, सबसे पहले आप अपना संक्षेप में परिचय हमारे श्रोताओं को दे, और आपके मन में कब ऐसा ख्याल आया कि आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहिए या बॉक्सिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल को ही आपको अपनाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, मेरा नाम नेहा कश्यप है और मैं बॉक्सिंग कोच हूँ टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। मैं काफी छोटी थी और हम चार बहनें हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं काफी उद्यमी रही थी और काफी नॉटी चाइल्ड थी मैं। बहुत ज्यादा शरारते करना, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व रहना। तो उस समय मेरे जो ब्रदर हैं मिस्टर रोशन लाल जी, उन्हें लगा कि इनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, ये कुछ बेहतर कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, और वो मेरे भाई थे और काफ़ी अच्छे, खुद भी वो प्लेयर रहे हैं, अभी वो इंटरनेशनल कोच हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं खेल से जुड़ी और आज तक मैं उस चीज़ को जारी कर पा रही हूँ।
0: अब हम आपसे बात करते हैं आपके सफर की, जब आपने इस खेल को चुना और यहाँ तक जब आप पहुँची है एज ए कोच के तौर पे, तो यह सफर आपका कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
1: जिस टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था और मैं बॉक्सिंग से जुड़ी थी, उस समय में गर्ल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अगर लड़कियां कुछ ऐसा करती भी थी कि फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई, तो वो कुछ ही चीज़ें थी, जैसे कि

0: भरतनाट्यम हो गया, कोई इंडियन क्लासिकल फोक या ऐसे
1: जी
0: कोई
1: जी
0: डांस हो, तो इससे ज़्यादा वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाती थी अगर वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी में करती भी थी तो। और उस समय में स्पोर्ट्स से जुड़ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था जो सोच थी लोगों की कि ये तो हमारे लिए समय की बर्बादी है,
1: जी
0: अगर आपको कुछ करना है तो आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए कुछ बड़े लेवल पे करिए थ्रू एजुकेशन। तो उस टाइम पर ये काफ़ी मुश्किल रहा था क्योंकि जो भी इंसान बात करता था या सोचता था तो उसे ऐसा लगता था कि ये तो समय ख़राब कर रहे हैं अपना, ये जो
1: जी
0: बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं छोटी, उस टाइम पे अपना समय बर्बाद कर रही हैं और ये उन्हें आगे समझ में आएगा कि उन्होंने कितना अपना समय ख़राब कर दिया है।
1: जी
0: तो इस तरीके से थोड़ी कठिनाइयाँ तो आई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, सबने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उसको पूरी लगन से और मेहनत से करिए,
1: बिल्कुल
0: एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप उसमें सफल ना हों। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए।
1: निश्चित तौर पर जो सीख मिली आपको आपके घर वालों से वो आपके काम आई, और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। नेहा जी, आपने जब बॉक्सिंग ज्वाइन की तो उस समय आप कितने वर्ष की थी?
0: जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसी खेल से जुड़ी रहूँगी। तब मेरा मानना ये था कि अभी मुझे सिर्फ मेहनत करनी है
1: जी
0: और जैसे कि हम किसी अंधेरे में टॉर्च लेके जा रहे होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत रास्ता दिखता है, उस तरीके से सिर्फ मैंने एक सोच रखी थी कि बस धीरे धीरे चलते रहेंगे और जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमें वो रोशनी ले जाए वहाँ तक जाने की हम कोशिश करेंगे।
1: अब बात करते हैं आपकी उपलब्धियों की, तो आपकी अभी तक की उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं।
0: जब से मैंने खेलना शुरू किया एज अ प्लेयर मेरा करियर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, मेरे नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है यूनिवर्सिटीज़ में और फेडरेशन कप, इन सब में मेरे मेडल रहे हैं। लेकिन मुझे इसके बाद इंजरी हो गई थी थोड़ा स्पाइन की, तो मुझे रोकना पड़ा और जब तक वो रिकवर हुई मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे खेलने की जगह कोचिंग लाइन में आना चाहिए और एक गुरु की भूमिका निभानी चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि शुरू से जो मैंने चीज़ें फेस करी चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि अब आने वाली जनरेशन उसको फेस करे। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए लाइन
1: जी
0: को और
1: जी
0: एज अ कोचिंग थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहिए लोगों को।
1: नेहा जी, एक बॉक्सिंग कोच के रूप में खिलाड़ियों को तैयार करने में किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान आपको देना पड़ता है?
0: होता यह है कि जो एक कोच रहता है उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं जो उसे काम करवाना है बच्चों से, और बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा
1: जी
0: रहते हैं
1: जी
0: और अलग अलग स्तर के रहते हैं, जैसे कि कोई नेशनल प्लेयर है तो कोई स्टेट लेवल का है, कोई इंटरनेशनल है और किसी का मेडल है किसी का नहीं है। अब इसके बाद बच्चा 6 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में है, तो हर तरीके का बच्चा और हर तरीके का उसका बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस, उसका करियर, इन सब के साथ डील करने के लिए कोच एक ही है और कोच का मेंटल लेवल बिल्कुल सटीक है, उसे पता है कि मुझे क्या काम कराना है कैसे कराना है। लेकिन चुनौती तब आती है, चैलेंजेस तब फेस करने पड़ते हैं जब वही सेम चीज़ बच्चों के दिमाग में ना हो, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, उनका अलग अलग दिमाग है, उनकी अलग अलग सोच है। अगर आज मैंने शाम को सोचा कि कल सुबह मैं बच्चों से 8 किलोमीटर रनिंग करवाऊंगी तो हो सकता है कि उसके लिए मैं मेंटली फिट हूँ लेकिन बच्चा नहीं है।
1: बिल्कुल
0: तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आज ही मुझे आज का काम भी करवाना है और आज ही मुझे उनको कल के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, क्योंकि सिर्फ बोल देना कह देना बच्चों ने सुन लिया उस काम को कर लिया और बस वो हो गया, उससे कभी भी रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक वो अंदर से भूख ना हो कि नहीं वो करना है और बहुत अच्छे स्तर पर करना है, उस लेवल पर करना है कि अब इसमें कुछ ना कुछ बेहतर होगा, जो कल हमने किया था उससे अच्छा होगा, आज 2 मुक्के हमने 1 सेकंड में मारे थे तो कल हमें 1 सेकंड में 5 मुक्के मारने हैं। तो ये जब तक अंदर से भूख नहीं आएगी, जब तक अंदर से चीज़ें उत्पन्न नहीं होगी बच्चों के अंदर कि नहीं हमें कुछ करना है, तब तक वो उस चीज़ में अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि हमारे साथ साथ हमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके मेंटल लेवल को भी हमेशा सही रखना है, हेल्दी रखना है और बनाए रखना है कि हमें काम किस तरीके से करना है और किस लेवल पर करना है।
1: जी जी जी, तो आप जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करती है?
0: एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो

0: है ना, हम उनको आज अगर मोटिवेट करेंगे तो वो कल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटली डाउन जाएंगे ही जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं उनको सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस करना है। आपको सिर्फ उस काम को करना है और जितना हो सकता है आप उसमें मन लगाएं। और दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप इसी काम को करते जाते हैं और पूरा फोकस होकर करते हैं, बिना किसी मतलब परेशान हुए चिढ़ते हुए, अगर आप उसको संयम से उस काम को करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उसमें निपुणता हासिल करने लगते हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं सबको मेडिटेशन करवाती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ताकि कहीं पर भी उनके साथ आगे चल के कहीं जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे,
1: जी
0: उनको उतना ज़्यादा परेशान ना करें। और इस तरीके से हम आपस में एक एज अ टीम वर्क हम काम कर रहे हैं अभी।
1: नेहा जी, फिजिकली फिट होना तो जरूरी है ही बॉक्सिंग में, और साथ ही मेंटली फिट होना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा मेंटली फिट रखने के लिए आप उनको मेडिटेशन कराती है, फिजिकल फिट रखने के लिए उनको कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस है जो करना आवश्यक है और वो करना जरूरी है हर प्लेयर के लिए?
0: एक्चुअली यहाँ बात सिर्फ प्लेयर की नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, सभी के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो कुछ ना करे कोई भी, चाहे वो प्लेयर हो, हेल्दी प्लेयर हो या वो इंजर्ड प्लेयर हो, वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें, या वो नॉन प्लेयर पर्सन हो, वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे। जैसे कि अपनी एज के हिसाब से अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है तो वो वॉकिंग हमेशा करें। आप छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि किराना तक जाना है तो आप स्कूटी से ना जाएं, बाय वॉक जाएं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सैर बाहर नहीं कर पा रहे तो अपनी छत पर कर लें, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ लें, ये सब चीज़ें। और जो प्लेयर हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। मतलब कि ऐसा वो दिन ना आए जिस दिन हमें लगे कि नहीं भाई आज तो बिस्तर से नहीं उठना है, आज तो मन नहीं कर रहा, आज तो सोना है। बस वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आपको बिस्तर से उठना है, आपको थोड़ा सा दौड़ना है, आपने 15 मिनट 20 मिनट जॉगिंग कर ली, थोड़ा सा आप स्विमिंग करने चले गए, या कभी आपने साइकिलिंग कर ली, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही। अगर कोई बॉक्सर है उसे फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो थोड़ी देर जाके वो खेल आए। मतलब ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका मन नहीं है या फिर आपको इंजरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो भी मैं कहूँगी कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को करें। जैसे कि हम हमेशा दिन में 3 बार खाना खाते हैं, पर सपोज कभी हमारा मन नहीं है तो हम हल्का फुल्का कोई फ्रूट ले
1: बिल्कुल
0: लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मतलब हमें किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है, हमें उसे चलते रहने देना। और सेम यही मेंटल हेल्थ के लिए है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो पूरा हमारी लाइफ को, हमारे अपीयरेंस को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को बताती है कि हम कैसे हैं, और वो ही उसको क्रिएट करती है एक्चुअल में।
1: जी
0: अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, थोड़े काम रहेंगे, तो हम हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, उनको चैलेंजेस नहीं होंगे। हाँ, बस ये है कि जो मेडिटेशन करते रहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा शांत रख पाते हैं, उनके लिए वो परेशानियां उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितनी बाकी लोगों को
1: बाकी लोगों
0: लगती
1: के लिए
0: हैं।
1: रहेगी।
0: जी
1: बिल्कुल सही
0: बिल्कुल।
1: बात है नेहा जी। एक कोच को किस प्रकार अपने आप को अपग्रेड करना होता है वक्त के साथ?
0: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी कोचेस हैं, वो चाहे रीसेंट कोच बने हों या वो पुराने कोच रहे हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी खुद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो खुद फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो होता ये है कि सरकार जो है वो समय समय पर 6 महीने साल भर में कोई ना कोई कोर्सेज निकालते रहते हैं, जो कि या तो SNC के, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के रहते हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े, या फिर साइकोलॉजी के रहते हैं हमारे मानसिक रूप से जुड़े हुए, तो ऐसे वो कोर्सेज निकालते रहते हैं। पर वो आप कोर्सेज करने चले जाएं और आप फिट ही नहीं हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि अगर मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ, मैं डेडलिफ्ट उठा रही हूँ 60-70 किलो का, या मैं कोई डंबल उठा रही हूँ 15-17 किलो का, और फिर मैं कुछ दिनों बाद कोर्स के लिए चली जाऊँ और वहाँ मुझे कहा जाए कि आपको डेडलिफ्ट करना है इस तरीके से, अभी तक आप जो करते थे वो टेक्निक पुरानी थी, अब आपको इस टेक्निक से करना है, अगर वो बताएं तो मैं उसको कर तो पाऊँ। अब अगर मैं खुद ही नहीं कर रही थी तो मैं उसको एक्सपीरियंस कैसे करूँगी, मैं
1: बिल्कुल
0: उसे
1: बिल्कुल
0: सीखूंगी कैसे?
1: बिल्कुल
0: सिर्फ देखकर मैं ये समझ पाऊंगी कि हाँ ये ठीक है वो गलत है, लेकिन खुद से एक्सपीरियंस करना एक एक मसल को, और जब मैं वो लोड ले रही हूँ तो उस पेन को, उस मेंटल स्ट्रेंथ को, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, इन सब चीज़ों को अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है तो एक कोच को खुद हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और

0: समय समय पर जो हमारी सरकार है वो कोई ना कोई कोर्सेज निकालती रहती हैं, तो इस तरीके से आप खुद को अपग्रेड रख सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुसार बॉक्सिंग महिलाओं के आत्मविश्वास में कैसे मदद करता हूँ।
0: बॉक्सिंग जो है वो एक कॉम्बेट स्पोर्ट्स है, और ये जो हमारा बॉक्सिंग गेम है वो आपको सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्ट्रांग नहीं बनाता है, इवन मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं छोटी थी तो मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन जब से मेरी पूरी एनर्जी स्पोर्ट्स में गई है, इस गेम में गई है, इस फिजिकल एक्टिविटी में गई है, तब से मेरा मन बहुत शांत हो गया है और मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान एकदम से गुस्सा नहीं दिखाती हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा, जो मेरा सारा एग्रेशन है, वो सारा का सारा वो खेलते हुए ही निकल जाता था। तो बाकी जगहों पे मैं काफ़ी काम और फ्री फील करती थी। और इसी तरीके से जितनी भी जनरेशन है, मुझे लगता है कि सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए, किसी ना किसी खेल से जुड़े रहना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो आपका सारा का सारा जो एनर्जी है वहाँ पर निकल जाए और आप बेहतर सोचने समझने की क्षमता रखें।
1: जी नेहा जी, युवाओं को फिट और अनुशासित रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेगी?
0: मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी उम्र के हों या जो भी काम कर रहे हैं, अच्छी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है तो कोई डांस से जुड़ा हुआ है, कोई सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है मानसिक रूप पर और शारीरिक रूप पर, तो आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। कुछ ना करें तो जॉगिंग ज़रूर करें, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें, 5 मिनट के लिए ही सही, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, साइकिलिंग कर लें, और रोज़मर्रा की जो आपके काम रहते हैं उनको बाय वॉक करें, जितना भी आप कर सकते हैं, जो आसपास के 400-800 मीटर के दायरे में जितने भी आपकी काम आते हैं, तो वो सारे आप पैदल जाकर ही करें, उसके लिए आप स्कूटी या बाइक ना उठाएं
1: जी,
0: तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके आगे की हेल्थ के लिए।
1: जी नेहा जी, निश्चित ही आपसे बातचीत करने के बाद हमें यह महसूस हुआ, पहले के समय में हम कहते थे कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई अपना भविष्य सवार सकता है, पर वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर खेलों में भी एक अच्छा करियर विकल्प है। नेहा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से की गई यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: खेल जगत में अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजभिये की बातचीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है यंगिस्तान।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
1: जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई है। गीत लिखा कौशर मुनीर ने।

अगला गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, जैम ने इसका संगीत तैयार किया है। रईस फिल्म का ये गाना है जिसे गाया अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह का गाया हुआ है। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा, संगीत जीत गांगुली का। फिल्म है सिटी लाइट्स।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए सिटी लाइट फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, आदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये पत्र आया प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। छुआ जो मैंने एक फूल गुलाब का, सारे बदन से तेरी खुशबू आने लगी।

अगला गीत सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। इन श्रोताओं की पसंद है सुहागन फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत तैयार किया मदन मोहन ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की पसंद का है, कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, भाटापारा दत्रेंगी से पतराया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर का। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है कामचोर फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इंदिवर के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया है। एक चेहरा जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता।

अगला गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लिया है, जिसे गाया है लता मंगेशकर महेंद्र कपूर ने। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया ने। मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है, मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है जब तेरी खुशबू इन हवाओं से मिलकर मुझे छू जाती है।

अगला गीत सुनना चाहा है सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया असमा सालिया शोएब खान राव भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। इन श्रोताओं की पसंद है अमानत फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। दूरी ऐसी कि मिटती ही नहीं, मैं तेरे पास भी आऊँ तो कहाँ तक आऊँ।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जूली फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया राजेश रोशन ने। सुना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। हर मोड़ पर नई शुरुआत हो सकती है, दूर रहकर भी बात हो सकती है। माना कि आपसे दूर है बहुत, लेकिन आंखें बंद करके तो मुलाकात हो सकती है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए जूली फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती।

0: अभी आप सुन रहे थे रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू

0: हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Chargé d'Affaires was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that US forces operating in the region take all necessary measures to